0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 6 अक्टूबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। स्वागत आप सभी श्रोताओं का।
1: सुबह के 5:56 हुए हैं, अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक

लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सबसे पहले समूह स्वर में मातृवंदना।

कार्यक्रम अर्चना में मातृवंदना के बाद आइए सुनते हैं गणेश वंदना, सुरेश वाडकर और साथियों के स्वर, रचना चंद्रशेखर पांडे की।

इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सागर है। 6:25 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। श्रोता, आपसे बस कुछ ही पलों में यानी 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। भूले बिसरे गीत सुनवाएंगे आपको 6:40 से। सुबह सुबह दैनिक वैचारिक क्रम होगा 7:00। कृषि चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कृषि संकेत सुनेगा 7:05 से। मंच आय गीत कार्यक्रम में आपकी फरमाइश के कुछ फिल्मी गीत लेकर आएंगे, समय होगा 7:20। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनते हैं गैर फिल्मी संगीत। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत होगा 8:15 से। 8:30 से आप सुनेंगे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। हमारा आज के इस पॉडकास्ट का विषय होगा वर्तमान परिदृश्य में संस्कृत की उपादेयता। इस विषय पर आज के मेहमान डॉक्टर शशि कुमार सिंह, जो सहायक प्राध्यापक हैं संस्कृत विभाग यूटीडी सागर में, इनसे बातचीत करेंगे। जिस विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे मुंबई केंद्र से, और इस बीच 8:50 पर आप हमारे स्टूडियो से सुनेंगे संगीत सरिता कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागनी लेकर आएंगे 10:05 से। आपकी पसंद कार्यक्रम में आपके फरमाइश के कुछ फिल्मी गीत लेकर आएंगे, समय होगा 10:30 और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेगा।

दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम रिले करेंगे। 5:30 पर स्टूडियो लौटेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। सदाबहार गीत होंगे 6:30 पर और शाम की सभा में लोकरंग कार्यक्रम का प्रसारण होगा 6:45 पर और 7:20 पर। किसानवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करेंगे 7:30 से। चित्रपट संगीत रात्रि 8 बजे आप हमारे स्टूडियो से सुन सकेंगे और संगीत सरिता कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 8:20 से। मन चाय गीत कार्यक्रम रात्रि 9 बजे और 9:30 से रिले किए जाएंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। अब सुन लीजिए श्रोताओं, हमारे आज दिन भर की सभा में अनुप्रसारित होने वाले समाचारों का विवरण। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे 6:55 पर। इन्हें हम दिल्ली केंद्रों से अनुप्रसारित करते हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं सुबह और शाम 7:10 पर, दोपहर 2:10 से। इन्हें आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाता है। सुबह 8:00 समाचार प्रभात, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण आपने सुना आकाशवाणी सागर से। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर अनुराधा पौडवाल और साथियों का।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर था अनुराधा पौड़वाल का। हम आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं, 6:40 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना मोहम्मद रफी के स्वर में। सलील चौधरी ने इस गीत को स्वरबद्ध किया है और फिल्म का नाम माया।
1: समंदर का जल वाष्प बनकर बादल बन जाता है।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में दस्तक फिल्म से ये गीत। शब्दकार है मजरूह सुल्तानपुरी और गीत को संगीत से सवारा मदन मोहन ने।
1: यहाँ पर पतंग की डोर सा रिश्ता हो जैसे

0: चना में अघुलनशील फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाया जाता है।
1: आइए अब सुनते हैं एक कली मुस्काई फिल्म से ये गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और इस गीत को संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने।
0: नत्रजन की आवश्यकता पूरी होती है बल्कि अगली फसल की नत्रजन की आवश्यकता कम हो जाती है। बीज को फफूंदनाशी, कीटनाशी व राइजोबियम

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है, 6:55 होने को है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्विस राष्ट्रपतिना गाय पार्मिलेन इत्यमुना सह मन्त्रणानन्तरं पञ्चसहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अत्रावधेयं यत् सन्धयः तावत् जनप्रवासाय, युवव्यावसायिकविनिमयाय, परिवहनप्रौद्योगिकीविकासाय च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् उभौ देशौ रक्षासहयोगे नूतनक्षेत्राणां अन्वेषणं विधास्यतः। परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे च परस्पर संबंधम अत्यंतं सुदृढं करिष्यतः।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: नवदेहल्यां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षांत समारोहे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अद्य मंगलमयं दीक्षांत भाषणं समाचरिष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह संभाषणे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः सहर्षं विज्ञापितवान् यत् अस्मिन् मंगलमये दीक्षांत महोत्सवे 13,500+ छात्र साधकाः सहभागिनः भविष्यन्ति। कुलपतिना संसूचितं यत् शैक्षणिक विद्या साधनायां सर्वाग्रणीभ्यः त्रिभ्यः मेधावी छात्रेभ्यः उपराष्ट्रपति करेभ्यः प्रतिष्ठितं शंकर दयाल शर्मा पदकं अर्पयिष्यते। अस्मिन् भव्य विद्या समारोहे 44,200 छात्राः विद्यावारिधि उपाधिभिः विभूषयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
1: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्येषु 5 विधानसभासनेषु तथा असमस्य नागाउं लोकसभासने च अद्य शांतिपूर्णं मतदानं प्रचलति। निर्वाचनायोगानुसारं मतगणना आगामी शुक्रवासरे सम्पादयिष्यते, यस्य फलं तावत्

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 7 बजे हैं। सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। न जाने किस मोड़ पर ये सफर मुकम्मल होगा, किसी अनजानी सुबह फिर नया सवेरा होगा। मुसाफिर हूँ इन राहों का ठहरना नहीं सीखा, कुछ खोया है फिर भी बिखरना नहीं सीखा। श्रोताओं, इन कठिनतम सी जिंदगी को सरल बनाने के लिए जीवन में सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं, अपनी अपनी सीमाएं होती हैं और श्रोताओं होना भी चाहिए, क्योंकि आज के बदलते परिवेश और तेज़ी से दौड़ती भागती दुनिया के साथ सामंजस्य रखना है तो स्वयं को शांत और स्थिर रखने के लिए कुछ सीमाएं जरूरी हैं, क्योंकि आज हर दूसरे इंसान की आदत हो गई है ओवरथिंकिंग, यानी अधिक सोच विचार। इस स्थिति में स्वयं को कुछ सीमाओं में बांधना जरूरी हो जाता है। जैसे किसी के लिए भी खुद को इतना तनाव में मत डालिए कि उसकी कीमत आपकी सेहत को चुकानी पड़े। आप चिंता करेंगे, तनाव लेंगे, गुस्सा करेंगे तो बीमार पड़ेंगे और शायद ज़िंदगी फिर बहुत मुश्किल भी हो जाएगी। याद रखिए श्रोताओ, इन सभी नकारात्मक आदतों के कारण नुकसान हमारा ही होता है। गुस्सा, नाराज़गी और मन में भरी हुई कड़वाहट सबसे पहले हमें अंदर से नुकसान पहुंचाती है। अगर कोई व्यक्ति खुद को बदलना नहीं चाहता तो आप उसे कितना भी समझा लें वह नहीं बदलेगा जब तक वह स्वयं नहीं चाहेगा। इसीलिए दूसरों की ज़िंदगी को ठीक करने में आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद मत कीजिए। जो आपके बस में नहीं है उसे छोड़ना सीखिए। हर बात का जवाब देना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं और हर किसी को बदलना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपने मन को शांत रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आखिर में आपके पास सबसे कीमती चीज़ आप स्वयं ही हैं। श्रोताओ, मानसिक सीमाएं तय करने का अर्थ स्वयं को बांधना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि किस बात को अपने मन में स्थान देना है और किस बात को वहीं छोड़ देना है। हर किसी की राय हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन उस सोच को हम अपने मन में

कितना प्रभाव डालने देंगे यह हमारे हाथ में है। इसीलिए हर विचार को सच मान लेना, हर बात को दिल पर ले लेना और हर परिस्थिति को अपने मन की शांति पर हावी होने देना आवश्यक नहीं है। और ऐसे ही समय में मानसिक सीमाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम दूसरों को तो नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं। इसीलिए जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए खुश रहना और स्वस्थ रहना। तो श्रोताओं, इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीजिए कार्यक्रम सुबह सुबह से अनुमति।

0: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह, यह आकाशवाणी सागर है। 7:05 हुए हैं। कृषि संकेत कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रही है नाट्य विधि से खाद बनाने की जानकारी, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं आज के विशेषज्ञ SS सोनी।
2: किसान भाइयों, अपने पास जो कंपोस्ट बनाने के लिए तीन विधियां हैं, एक तो भू नाडेप, एक बर्मी कंपोस्ट और एक नाडेप। तीन विधियों से अपन खाद बना सकते हैं। भू नाडेप, अपना जमीन में जो गड्ढा है उसको 12 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा एक गड्ढा खोद लेते हैं, और नियमित रूप से जो किसान भाई बुंदेलखंड में एक प्रचलित प्रथा है कि घूरा डालते हैं, और घूरा डालने से वो खाद तैयार नहीं होता, बल्कि अपचन के कारण कुछ कच्चा गोबर भी खेत में डाल देते हैं, जिसकी वजह से नींदा और ज्यादा होता है। और अपन समझते हैं कि ये खाद बन गया, तब कि उसको खोदते हैं तो ज्यों का त्यों गर्म खाद निकलता है, इससे नुकसान होता है। अपना 12x5x3 का गड्ढा कर खोद लेते हैं और अपनी जो नाडेप बनाना है वो जमीन के अंदर बन जाता है, जिसको भू नाडेप नाम दिया गया है। उसमें आप तीन परत उसी प्रकार से, पहले कचरा, फिर गोबर और फिर मिट्टी को डालते हुए तीन परतें लगाएंगे, और जब ऊपर भर जाएगा तो उसको मिट्टी से ढाक देंगे। और उसमें बेहतर बनाने के लिए ये है कि किसानों भाइयों के पास पाइप लाए, पाइप है जो सिंचाई का पाइप है, उसमें छेद करके ऊपर तक लगा दें। क्या होगा कि एक तो हवा मिलती रहेगी और अपन को कम लगता है कि नमी कम है, तो अपन उससे पाइप के माध्यम से अपन उसमें पानी भी डाल सकेंगे, क्योंकि किसी भी सड़न के लिए हवा और पानी बहुत जरूरी है। और अपनी जो देसी विधि है उसमें जो घूरा लगाते हैं उसमें एक तापक्रम भी एक इसमें प्रभाव डालता है, तो किसान भाइयों ने देखा होगा कि जब वो खाद निकालते हैं गोबर का जब घूरे को, तो पूरा गर्म निकलता है, उस टेम्परेचर के कारण वो नहीं सड़न हो पाती। तो इससे तीनों चीजें तरह से बन जाएंगे और 3.5 महीने के अंदर ये खाद बन के तैयार हो। दूसरा नाडेप बनाने की, जो जमीन के ऊपर बनता है, इसको बनाने के लिए अपने पास दो विधियां हैं, या तो अपन पक्का बनाए, और जिन किसान भाइयों के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो टटिया नाडेप भी बना सकते हैं, जो जमीन के ऊपर बनता है। नाडेप इसको बनाना है अपन को, वो ही विधि है, 12 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा, उसको ऊंचाई 3 फुट से ज्यादा नहीं करना है। और जो अपने तीसरा और छठवां और नौवां रद्दा होता है, जो ईंट की जुड़ाई हो, तो मैं खांचा छोड़ना है हवा के लिए, या अपन पानी डाल सके उसको नमी, इसको बनाने के लिए। को भरने की विधि वही है कि सबसे पहले तो अपन कचरा डालेंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, और उसके बाद गोबर की मात्रा को घोल के रूप में उसको अपन इस प्रकार से

0: डालेंगे कि जो हमारे तीनों परत है वो भीग जाए। एक परत कम से कम 9 इंच ऊंची रहे कचरा की, मिट्टी की करीब अपन 6 इंच के करीब डाल दे, और गोबर ऊपर से, अब गोबर तो रहता नहीं है, गोबर की मात्रा कम हो तो घोल के रूप में अपन उसको डालते हैं तो वो पूरा सेचुरेट हो जाए। मतलब ये है कि पूरा इतनी कम से कम 9 परतें आती हैं, फिर उसके ऊपर से मिट्टी करके भी शेप में ऊपर ऐसा बंद हो जाता है, कोना टाइप का चारों तरफ से बंद छोड़ देते हैं। और ताकतवर बनाना है तो अपने जिप्सम का उपयोग अपन कर सकते हैं, राख फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं अपन, उसमें बढ़िया है कि टाई को डर्मा डाल दें। वैसे हमारा जो हिसाब है कि अगर ऐसे तो वेक्टर कल्चर डालते हैं तो ये सड़न क्रिया और जल्दी।
1: नाटेप विधि से खाद बनाने की जानकारी अभी आपको ये जानकारी दे रहे थे आज के विशेषज्ञ SS सोनी। कृषि संकेत कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी सागर से, 7:10 होने को है। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कुछ ही पलों में। रात्रि 8 बजे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा सुना जा सकेगा।

आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अप

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से हिमाचल प्रदेश का 3 दिवसीय दौरा। भोपाल में आज सीएम यूथ कॉन्क्लेव, 20,000 से ज्यादा युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। हरसूद में रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती पर 52 गढ़ों के राजवंशज हुए सम्मानित। और मंदसौर में आज बलराम कृषि महोत्सव, बड़ी संख्या में किसान होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति मनाली जाएंगी। वहीं 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति हिडिम्बा मंदिर में दर्शन करेंगी और रोहतांग स्थित अटल टनल का दौरा करेंगी। भोपाल के लाल परेड मैदान में आज सीएम यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के 20,000 से ज्यादा युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के इस आयोजन में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्टार्टअप, नवाचार और एआई तथा रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी उभरती तकनीकों से जुड़े अवसरों की जानकारी दी जाएगी। कॉन्क्लेव में 80 से अधिक प्रदर्शनी कक्ष लगाए जाएंगे, जबकि आईआईटी और एम्स के विशेषज्ञ करियर, तकनीकी और मानसिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन देंगे। इस कार्यक्रम में जुबिन नौटियाल और कबीर कैफे की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राष्ट्रीय चिंतन शिविर में शिरकत की। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि PMGSY का अगला चरण सिर्फ सड़क निर्माण नहीं बल्कि गांवों तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण संपर्क देने पर केंद्रित होना चाहिए। श्री चौहान ने बताया कि देश में अब तक करीब 8,50,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन चुकी हैं। श्री चौहान ने कहा कि
1: अब इस क्लाइमेट रेडी कनेक्टिविटी की बात यहाँ आई, क्लाइमेट रिजिलेंट और ग्रीन रूरल रोड्स। अब ये अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, मौसम की चुनौतियां लगातार क्लाइमेट चेंज के इस दौर में आती जा रही। परिस्थितियों में कई बार हम विचार नहीं करते, सड़क सैंक्शन हो, हर एक राज्य की परिस्थिति आपको पता है, तो उसको ध्यान में रख के हम कैसे DPR बनाएं, डिजाइन कैसे

0: बने, इन सब चीजों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। सड़क बनाते समय कैसे पर्यावरणीय दायित्व को हम पूरा करें उस पर आप विचार कीजिए। मित्रों, स्वीकृति के बाद काम में अनावश्यक देरी नहीं होनी।
1: गुजरात के केवड़िया में आयोजित चिंतन शिविर में कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में पीएम गतिशक्ति के उपयोग और नवाचारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रयोग दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बने हैं और सफल नवाचारों को साझा करने के लिए बैंक ऑफ आइडियाज, इनोवेशन एंड रिसर्च जैसी वेबसाइट बनाई जानी चाहिए। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि पीएम गतिशक्ति से प्रदेश की 74,370 किलोमीटर सड़कों, 2,601 सरकारी भवनों और 3,654 पुलों को जियो टैग किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल हरसूद के छनेरा में रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर यादव ने उनके साहस, स्वाभिमान और प्रशासनिक दक्षता को याद किया। इस मौके पर गोंडवाना के 52 गढ़ों के राजवंशजों को पहली बार सम्मानित किया गया और खंडवा समेत 6 जिलों के 3,54,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को 21,34,00,000 रुपये से ज्यादा का बोनस वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने खंडवा में करीब 143 करोड़ रुपए के 18 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि
3: ये 8.5 करोड़ के नागरिकों का हमारा परिवार, मध्य प्रदेश का परिवार, एग्रीकल्चर के बलबूते पर मध्य प्रदेश में बदलते दौर में प्रदेश भी बदल रहा है और देश भी बदल रहा है। ऐसे समय में जब 10 संभाग के 55 जिलों के 50,000 से अधिक गाँव में तैनात कृषि विभाग के एक एक अधिकारी कर्मचारी की भी हम चिंता करते हैं, जब हम गेहूं का संकलन करते हैं तो देश में नंबर 1 पे पहुंचते, तो बड़ी भूमिका आप सबकी हो, आप सबके माध्यम से, और कोई एक क्षेत्र नहीं, सभी समान क्षेत्र में। सच में ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट है।
1: मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व आवास दिवस पर आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रदेश में योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 9 लाख से ज्यादा आवास बनकर हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं। योजना के BLC घटक में बेहतर क्रियान्वयन और अधिक पक्के आवास पूरे करने के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। मंदसौर में आज कृषि उपज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में जिले भर से किसान शामिल होंगे और कृषि विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं के स्टॉल व प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। महोत्सव में किसानों को खेती की नई तकनीकों, सरकारी योजनाओं और कृषि उपकरणों की जानकारी के साथ साथ प्रशिक्षण और कृषक संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत विविधतापूर्ण कल्याणकारी व शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। इसी क्रम में मंदसौर के शासकीय लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट विद्यालय तथा खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में करियर काउंसलिंग कार्यशाला और विशेषज्ञ संवाद का आयोजन कल किया गया। इसमें युवाओं को करियर मार्गदर्शन, कौशल विकास एवं वोकल फॉर लोकल जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत इंदौर के शासकीय बाणगंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एक विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। भोपाल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आज करीब 9.5 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। 1 से 19 साल तक के बच्चों को स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, मदरसे और छात्रावासों में नोडल टीचर की मौजूदगी में दवा दी जाएगी। इसके अलावा 20 से 49 साल तक की गैर गर्भवती और गैर धात्री महिलाओं को भी एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3री बार बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि शुल्क जमा करने और आवेदन में संशोधन के लिए 12 अक्टूबर तक का समय रहेगा। ग्वालियर के ऐतिहासिक मोती महल परिसर में अब म्यूजियम ऑफ म्यूजिक बनाया जाएगा, जिसमें संगीत सम्राट तानसेन और भारतीय शास्त्रीय संगीत की विरासत को सहेजा जाएगा। प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 19.18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भवन में अलग अलग गैलरी और प्रदर्शनी क्षेत्र बनाए जाएंगे, जहां पर तानसेन के जीवन, संगीत साधना और उनसे जुड़ी स्मृतियां प्रदर्शित होंगी। भोपाल प्रेस क्लब की ओर से कल हिंदी पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और चुनौतियों पर मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव, आपत्तिजनक भाषा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पत्रकारिता के सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। वरिष्ठ पत्रकारों ने बदलते दौर में पत्रकारों को सजग रहते हुए इन चुनौतियों का मिलकर सामना करने की बात कही। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए राजीव सोनी समेत राजधानी के 12 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मैहर गौरव दिवस पर कल मैहर शहर के फुटबॉल ग्राउंड में 3,430 छात्र छात्राओं ने एक साथ कथक नृत्य की प्रस्तुति देकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। विद्यार्थियों ने लगातार 9 मिनट 34 सेकंड तक एक लय और अनुशासन के साथ कथक की विभिन्न मुद्राएं प्रस्तुत की। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारी बीके जैन ने बताया कि इससे पहले सामूहिक कथक का रिकॉर्ड 1400 विद्यार्थियों के नाम था। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट के तहत 7 देशों से आए 16 विदेशी टूर ऑपरेटर्स ने कल खरगोन के महेश्वर क्षेत्र के ग्रामीण पर्यटन गांव नावड़ा तोड़ी और बोथू का भ्रमण किया। विदेशी मेहमानों ने नाव से नर्मदा की सैर की और होमस्टे, खेती, स्थानीय खानपान और निमाड़ी लोक संस्कृति का अनुभव लिया। ग्रामीणों ने पारंपरिक गीत संगीत और नृत्य से उनका स्वागत किया। वहीं उन्हें केले और पपीते की खेती तथा स्थानीय जीवन शैली की जानकारी भी दी गई। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में चक्रवाती गतिविधि के चलते जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, मऊगन, सीधी, सिंगरौली और शहडोल में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग यूनिसेफ के सहयोग से आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। झाबुआ की राणापुर जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 से पंचायत उप निर्वाचन में कमलेश सिंगाड़ को निर्वाचित घोषित किया गया है। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। मंडला में नए और छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अक्टूबर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी जिला चिकित्सालय में आयोजित निःशुल्क शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा कटे फटे होंठ और तालू से पीड़ित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इंदौर में पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान 10 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत गुना के न्यू कलेक्ट्रेट हॉल में जिला स्तरीय शॉर्ट फिल्म और पोषण प्रदर्शनी आयोजित की गई और कटनी में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों और गैर गर्भवती महिलाओं को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार भोपाल।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंच जाए गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। कार्यक्रम में शामिल होंगी कुछ व्हाट्सएप फरमाइशें। सबसे पहली ये फरमाइश है धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण वाठे, संदीप वाठे, अमूल्य वाठे की। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा गांव हिपर सोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख और बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है एक मुट्ठी आसमान फिल्म से ये गीत, और इस गीत को आवाज दी किशोर कुमार और वाणी जयराम ने। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश।
0: या फिर बालकनी में खड़े होकर चाय की उस पहली घूंट के साथ हम

0: गर्मा गर्म 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज,
1: चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
2: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय
0: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। फरमाइश करता है आप सभी श्रोता, खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे, सुशीला मेघा नेहा यशु भीमटे, थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष सतीश आयुष आयुषी और सानवी गुप्ता। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं आराधना फिल्म से ये गीत।

0: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल उच्चतम तकनीक और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ यहाँ उपलब्ध है सभी प्रकार के स्त्री रोगों का इलाज, जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन, डिलीवरी सुविधा, सीजर ऑपरेशन से डिलीवरी, स्तन में गठान और निसंतानता का किफायती व आधुनिक इलाज।
1: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल, मेन तिली रोड, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, सागर।
2: कार्यक्रम मंच है गीत, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। अगली फरमाइश इन श्रोताओं की। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता, योगेश, मुस्कान, जितेंद्र और समस्त मालाकार परिवार। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। इस गीत को सुनना चाहा है बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं तराना फिल्म से ये गीत शैलेंद्र सिंह के स्वर में।

अगला गीत सुनने के लिए हमें अनुरोध लिख भेजा इन श्रोताओं ने, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरों निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, अलिजबा अयान मंसूरी, यश मंसूरी और नुमैर मंसूरी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। इस गीत को सुनना चाहा है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार वालों ने। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में असली नकली फिल्म से ये गीत।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइशें प्राप्त हुई इन श्रोताओं की। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान के ये श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। मागज वार्ड चार लोको दमो से पीहू, कान्हा, सृष्टि, राम, मोहिनी, पूजा, पवन, गगन, खुशबू और समस्त रेखवार परिवार। बटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी और तानिया नारंग। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाजें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मन चाहे गीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 7:45 हुए हैं। संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं निदा फाजली का ये गुलाम, लता मंगेशकर और जगजीत सिंह के स्वर में।

संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें आप सुनवा रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए अब सुनते हैं चंदन दास के स्वर में डॉक्टर बशीर बद्र का ये कलाम।

0: बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: आइए अब सुनते हैं शायर इसरार अंसारी का ये कलाम ए हरिहरन के स्वर में।

इस गजल के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है, 8 बजने को है। खुशी पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश, साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उड़ीसा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
3: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
4: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में

0: पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
1: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजयनगरम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
2: इन माई ओपिनियन विरिंगम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ शिपमेंट्स प्रेजेंटली हैंडल्ड थ्रू द फॉरेन पोर्ट्स लाइक कोलंबो, जबलाली इन दुबई और सिंगापुर कुड बी ब्रॉट बैक टू विरिंगम, आई एम श्योर दैट वी कैन क्रिएट एनॉर्मस वैल्यू विद इन इंडिया थ्रू ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इवन अलाइड इंडस्ट्रीज।
0: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुअनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल,

तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं सुशीला देवी से ये चेतावनी।

0: गर्मा गर्म 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज।
1: चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
2: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय
0: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
3: लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं ललित प्रसाद तिवारी से ये लोक भजन।

0: बात ये है,
1: ये शर्माने की बात नहीं है। अगर आप आइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियों से परेशान हैं, तो मिलिए सर्व सुविधा संपन्न श्री सिद्धि विनायक अस्पताल में, जहां आपको मिलेगी सस्ती दरों पर ऑपरेशन की सुविधा जैसे लेजर और स्टेपलर।
0: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल, मेन तिली रोड, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, सागर।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाती है खिलान प्रसाद कुशवाहा से ये चेतावनी।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए सुशीला देवी, ललित प्रसाद तिवारी और खिलान प्रसाद कुशवाहा के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। कार्यक्रम में हमारे आज का विषय है वर्तमान परिदृश्य में संस्कृत की उपादेयता। इस विषय पर बातचीत करेंगे हमारे मेहमान डॉक्टर शशि कुमार सिंह, जो सहायक प्राध्यापक हैं संस्कृत विभाग यूटीडी सागर में। इनसे भेंट कर रहे हैं जय शेखर। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का जन सेवा का नेतृत्व।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर के साथ। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी, जो संस्कृत विभाग डॉक्टर हरि सिंह कौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में पदस्थ हैं। और आज की इनसे जो बातचीत का मुद्दा है वो है वर्तमान परिदृश्य में संस्कृत की उपादेयता। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो सवाल संस्कृत के बारे में आता है कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं पर क्या प्रभाव डालती है और इसका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। संस्कृत भाषा, जहाँ तक हम देखते हैं, यह संस्कृत हमारे भारतवर्ष की पहचान है
0: जी।
1: संस्कृत भारत की भाषाओं की जितनी श्रृंखला देखी जाए उसमें प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा है। और हमारे भारतवर्ष की संस्कृति के जितने भी साहित्य उपलब्ध हैं वो सब मौलिक साहित्य संस्कृत में ही निगदित किए गए हैं, निबंधित किए गए हैं। एक उक्ति आती है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे
0: जी,
1: संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो भारत की प्रतिष्ठा के दो घटक हैं, संस्कृत और संस्कृत। तो संस्कृति की जितनी विवेचना हमारे संस्कृत में मिलती है, इस आधार पर हमें पाते हैं कि अगर हमें भारत को समझना है तो हमें संस्कृत को समझना चाहिए
0: जी।
1: और इसी कारण से संस्कृत को हमारे यहाँ की जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया, जिस कारण से उन भारतीय ज्ञान परंपरा में मौलिक ग्रंथों को पढ़ना समझना हर विषय के अध्येताओं के लिए आवश्यक बनाया गया हुआ है। तो उसमें बिना संस्कृत को पढ़े समझे उसे नहीं समझा सकता कि यह संस्कृत का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कब हुआ। तो संस्कृत को संस्कृतम नाम दैवी वाक कहा गया हुआ है, वह देववाणी भी कही जाती है
0: जी।
1: तो देववाणी के प्रति कहने का मतलब ये नहीं है कि चूंकि संस्कृत भाषा किसी देवता के द्वारा बोली जाती थी, मगर यह कहा जाता था कि वह भाषा बहुत कुछ अपने में समाहित किए हुए होती थी
0: जी।
1: और इस कारण से हम पाते हैं जो हमारा सबसे प्राचीनतम साहित्य है, जो हमारे भारत में जो वेद की महत्ता है, वेद सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है। और वह कहा ही जाता है कि ऋषियों के द्वारा, ऋषियों मंत्र द्रष्टारः एक कहा जाता है, ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया है। तो वो दर्शन करने का तात्पर्य यह है कि जिस भी देवता का सूक्त ऋषि बोलता था उस देवता का उसे दर्शन होता था और वो सारी बातें उनके मुख से निकलती थी, मगर वो होती थी वो दैवीय शक्ति संपन्न। तो इसलिए उसे दैवी वाक भी कहा जाता है। तो यह संस्कृत का जो प्रादुर्भाव है वह बहुत प्राचीन है, वेदों से संस्कृत को हम जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और धीरे धीरे संस्कृत बाद में लौकिक संस्कृत के रूप में भी बदली, जैसा हम बताएं आपसे कि वेद का जब अध्ययन करते हैं तो वेद का अध्ययन चार भागों में किया जाता है।

0: ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां ऋषियों द्वारा गाई गई हैं, यजुर्वेद में यज्ञ का विधान बताया गया हुआ है, सामवेद में गीत संगीत की बातें की गई हैं, और अथर्ववेद रस और दुनिया के जो अपने जीवन लोक से, हाँ, से जुड़ा हुआ
1: जी, जी,
0: पक्ष बहुत अच्छे से विवेचित है। तो यह चीजें हैं, परंतु इन वेदों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो चार खंडों में करते हैं। वो होता है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो यह जो भाषा है इनमें वह वैदिक संस्कृत की भाषा है। वैदिक संस्कृत, यह संस्कृत थोड़ी लौकिक संस्कृत उससे थोड़ी भिन्न हो जाती है। लौकिक संस्कृत में जब महर्षि पाणिनी का नाम आपने सुना,
1: जी जी बिल्कुल,
0: महर्षि पाणिनी जो व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य हैं, अष्टाध्यायी की रचना उन्होंने की है, हालांकि उन्होंने वेद और लौकिक संस्कृत दोनों पर उनका उसका घटित करते हैं, उनका व्याकरण घटित होता है, परंतु वहां से जब भाषा लिखी गई तो रामायण से हम लोग जब मानते हैं, तो रामायण का जो रचन की रचना है वह लौकिक संस्कृत में की गई
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: और वेद की जो रचना है वह वैदिक संस्कृत
1: में।
0: तो कुछ वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में रूप की भिन्नता होती है, मगर बहुत अधिक अंतर नहीं है। फिर भी लौकिक संस्कृत महर्षि पाणिनी से शुरू होती है, ऐसे हम लोग लौकिक संस्कृति को लेकर के, और हमारे बहुत सारे ग्रंथ रामायण महाभारत उसके बाद हमारे जितने पुराण हैं ये सारे के सारे ग्रंथ लौकिक, नाटक हैं तमाम, महाकाव्य हैं, अभी भी जो संस्कृत है वो सब लौकिक संस्कृत।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, भारतीय भाषाएं जो दूसरी रही हैं, चाहे हिंदी ले लें, ब्रज, अवधि, तो इन भाषाओं के ऊपर संस्कृत का क्या प्रभाव पड़ा?
0: हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से भाषाएं एक दूसरे का कहीं ना कहीं से मदद करती हैं, प्रत्येक भाषाएं एक दूसरे की मदद करती हैं। अभी हम आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि संस्कृत का क्या प्रभाव पड़ा
1: जी।
0: हम ये तो देख रहे हैं कि संस्कृत भी जब आधुनिक रूप में लिखी जा रही है तो बहुत सारी अन्य भाषाओं के शब्दों का संस्कृत में हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं
1: जी।
0: तो यह भाषाएं एक दूसरे की मदद करती हैं। भाषाएं कभी किसी के प्रति वितृष्णा का भाव नहीं होनी चाहिए। भाषा बहुत ही दुर्लभ चीज है, यह मनुष्य के अपने भाव अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम है। संस्कृत भाषा अपने आप में चूंकि प्राचीन काल से चली आ रही है और बहुत व्यवस्थित ढंग से संस्कृत का वाक्य विन्यास जो कहा गया है, और ये कहा गया है नासा के वैज्ञानिकों के भी द्वारा कि संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है, तो संस्कृत की जो का जो वाक्यविक ज्ञान है वह अन्य भाषाओं से थोड़ा सा अलग प्रकार का है और बड़ा ईजी है, तो इस कारण से बड़ा मशीनी भी कहा जा सकता
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल।
0: वो लोग मशीन के लिए बहुत उपयुक्त भाषा संस्कृत मानी, कंप्यूटर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बहरहाल तो जैसा आपका एक आपकी जिज्ञासा थी सर कि कैसे संस्कृत उपकार करती है
1: जी।
0: तो संस्कृत और हिंदी को अगर देख लें तो हम जनरली सामान्यतया आते हैं कि तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्द बोले समझे जाते हैं। तत्सम का मतलब हुआ कि उसके समान, उसके समान किसके समान, तो वह संस्कृत के समान।
1: अच्छा अच्छा।
0: और तद्भव मतलब अब उससे उत्पन्न बनाया गया जो, और उससे हो गया कुछ, परिवर्तित हो गया उसका स्वरूप, तो हो गया तो वह स्वरूप जो है थोड़ा बदला हुआ हो जाता है, जो लोक का प्रभाव पड़ जाता है उसके ऊपर, मगर तत्सम जहां तक शब्द हैं वो हिंदी के सारे तत्सम शब्द संस्कृत से, तो इसलिए संस्कृत भाषा हिंदी भाषा के साथ बहुत अच्छे ढंग से जुड़ी हुई है। और कभी कभी लोग कहते हैं कि भाषा संस्कृत भाषा जननी है अन्य भाषाओं की, हालांकि मैं इस बात से बहुत अधिक इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हर भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर भाषा उस सामाजिक वर्ग जहाँ पर वो बोली जाती है उनके लिए वह सम्मान के योग्य हुआ करती है, तो संस्कृत थोड़ी पुरानी है इसलिए ऐसा कहा जाता है, मगर उसका प्रभाव दिखाई देता है। ऐसी अन्य भाषाओं में भी हम संस्कृत को पाते हैं। हम पितर शब्द लेते हैं, इसमें पितृपक्ष भी चल रहा है। पितर को देखें तो अंग्रेजी का फादर आपको लगभग पितर के आसपास दिखाई देता
1: है। बिल्कुल सही कह रहे हैं,
0: है ना।
1: अच्छा एक तो, बात और समझ में आती है डॉक्टर साहब
0: जी, जी
1: कि जैसे हिंदी भाषा के साथ थोड़ा सा प्रयोग ज्यादा हो जाते हैं आजकल, भी अपना स्वरूप मूल स्वरूप भी खोती जाती है कई बार, लेकिन फिर वापस आ जाती है, लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? ये
0: बहुत सुंदर आपके इस प्रश्न का मैं नमन करता हूँ आपके, उसके बिल्कुल सही कहा आपने। संस्कृत का जो व्याकरण है
1: जी
0: और हिंदी का जो व्याकरण है, अगर आप इसको कंपैरेटिव देखें तो आप पाएंगे कि हिंदी का अपना कोई व्याकरण ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये हिंदी का बिल्कुल एक ऐसी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसको लेकर के आप हिंदी का मूल्यांकन कर सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है।
0: मगर संस्कृत के जो ग्रंथ है

0: हैं वह बहुत अधिक व्याकरण के नियमों से बिल्कुल जो शब्द हैं वह बहुत अच्छे से सिद्ध किए जाते हैं, उनमें छेड़छाड़ करना, उनको बदलना बड़ा मुश्किल हुआ
1: मुश्किल और हमें लगता है वश में नहीं है किसी के
0: नहीं है। जो भी भाषाएं व्याकरण निष्ठ हुआ करती है उस भाषा के स्वरूप में बहुत परिवर्तन नहीं हो पाया करता है। आप तमिल भाषा पाएंगे जो दक्षिण भारत की भाषा है उसका भी अपना व्याकरण है, यही कारण है कि तमिल ने अपना स्वरूप नहीं बदला।
1: अच्छा, अच्छा।
0: संस्कृत ने भी अपना स्वरूप नहीं बदला
1: जी।
0: हम संस्कृत में नए शब्दों को स्वीकार भी करते हैं तो व्याकरण के नियमों से सुसंस्कारित करके स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि संस्कृत जब भी उस किसी को भी स्थान देती है तो अपने अनुसार उसको पहले परिमार्जित करती है, व्यवस्थित करती है, अपने अनुरूप में ढालती है। फिलहाल
1: क्या यही विशेषता संस्कृत को और मजबूत बनाती है?
0: हाँ, यही है कि इनकी विशेषता बन जाती है इससे। मगर यह एक दूसरे पक्ष से तरह से देखें तो संस्कृत को जनभाषा बनाने का इस समय आंदोलन चला हुआ है।
1: हाँ।
0: और हम सब लोग संस्कृत बोलना सिखाते हैं, 10 दिन में हम शिविर वगैरह लगाते हैं उसमें संस्कृत बोलना सिखा सकते हैं। जो भी कोई व्यक्ति साधारण से साधारण व्यक्ति है वह अगर संस्कृत बोलना चाहता है तो वह 10 दिन में संस्कृत बोलने का अभ्यास कर सकता है, मगर हमें संस्कृत के नियमों में थोड़ा शिथिलता ले आनी पड़ती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है,
0: क्योंकि हमें लोक के पास पहुंचना होगा तो लोक के जैसे अपने आप को ढालना होगा। अगर हम बहुत सख्त होंगे अपने नियम के प्रति तो उसमें समस्या
1: ग्रहता थोड़ी सी
0: जी। जैसे संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
1: बिल्कुल
0: अन्य भाषाओं में केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
1: हाँ।
0: परंतु होता क्या है कि जो ज़्यादातर भाषाएं हम हिंदी बोलते हैं या अपनी बुंदेलखंडी बोलते हैं या और अन्य भाषाएं बोलते हैं उसमें 2 ही वचन बोले जाते हैं। संस्कृत का यह जो द्विवचन है वो संस्कृत की भाषा में तो मिलेगा, संस्कृत के ग्रंथों में मिलेगा, परंतु लोक में नहीं मिलेगा।
1: लोक में नहीं मिलता।
0: तो जब हम बोलना सिखाते हैं लोगों को तो उनको हम एक वचन और बहुवचन का प्रयोग भी सिखाते हैं, तो द्विवचन का 33% तो गायब हो जाता है जिससे उन लोगों को आसानी हो जाती है समझने।
1: जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही रोचक और ज्ञान का भंडार है नाट्य शास्त्र।
0: जी जी।
1: भरत मुनि जी का जो लिखा हुआ है इसके बारे में वैसे तो बातचीत की जाए तो पूरा एक क्या कई बातें इसके ऊपर हो सकती हैं, फिर भी आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे इस ग्रंथ?
0: नाट्य शास्त्र एक विलक्षण ग्रंथ है
1: जी।
0: हमारे वर्तमान समय में संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हैं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी
1: जी।
0: उनका कहना है कि अगर भारतीय संस्कृति को समझना है तो 5 ग्रंथों को आप पढ़ लीजिए, आप भारतीय संस्कृति को ठीक समझ जाएंगे। उसमें उन्होंने नाम लिया ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र और नाट्यशास्त्र। इन 5 ग्रंथों को पढ़ लीजिए, उसमें नाट्यशास्त्र में उन्होंने नाट्यशास्त्र विश्वकोश भी लिखा, तो नाट्यशास्त्र के बारे में अगर आप जो पूछना चाहते हैं, नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि के द्वारा लिखा गया बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है
1: जी।
0: वो ये हुआ ये था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना तो कर दिया ब्रह्मा जी ने, वह तो ग्रंथ ऐसा था कि जो बड़े ही जिसकी प्रकृष्ट बुद्धि है, उन्नत जिसका अपना चिंतन है, वह उस भाषा को समझ पाता था। तो ये यहाँ के लोग बड़े निराश हुए कि जो लोग ज्ञानी लोग हैं उनको तो वेद का ज्ञान मिल रहा है, वो आनंदित हो रहे हैं, परंतु जो लोग सामान्य जन हैं उनके लिए तो कुछ बनाया नहीं गया। तो ये लोग ऋषियों के पास गए, उनसे कहे कि भाई हमारे लिए भी कुछ ऐसा विषय बनना चाहिए। ऋषिगण देवताओं के पास गए, देवता इंद्र के पास गए, इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ऐसी ऐसी बात है, ज़रूर ये तो सही बात है कि कुछ ऐसा मनोरंजन तो होना ही चाहिए जो सामान्य लोग भी उससे अपना आनंदित हो सकें। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने एक 4 वेदों से कुछ कुछ पोर्शन निकाला और एक नए वेद की रचना कर दी, नाट्य वेद की रचना कर
1: जी।
0: ऋग्वेद से उन्होंने पाठ्य सामग्री निकाली, विषय निकाला, यजुर्वेद से अभिनय निकाला, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस, इन 4 को मिला करके 5वां वेद बना जिसका नाम हुआ नाट्य वेद।
1: क्या बात है।
0: और ये कहा गया कि ले जाइए इंद्र जी, इसको अब मृतलोक में सबको सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, हम देवता लोग हैं, धारण करने की शक्ति तो ऋषियों में होती है, तो इसके लिए भरत मुनि उपयुक्त पाया गया। भरत मुनि ने उस नाट्य वेद को अपने लौकिक संस्कृत में नाट्यशास्त्र के रूप में परिणत किया, और नाट्यशास्त्र, और भरत मुनि के 100 पुत्र थे, उन 100 पुत्रों ने मिलकर के नाट्यशास्त्र को के सिद्धांतों के आधार पर बड़ा सुंदर अभिनय शुरू किया। पहला जो नाटक था वो समुद्र मंथन।
1: अच्छा।
0: नाटक था, और उस नाटक को करते हुए और फिर बहुत बड़ा नाट्यशास्त्र को आप पढ़ेंगे 36 अध्यायों में
1: तो लिखा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारतीय

0: अच्छे देता रहे हैं। प्राचीन देवताओं में आप पाएंगे कि यहाँ पर एक पंडित रामजी उपाध्याय जी करके, प्रोफेसर रामजी उपाध्याय जी हुआ करते थे। रामजी उपाध्याय जी संस्कृत के बहुत प्रोधाचार्य थे, जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी थे, और उन्होंने बहुत अच्छी पत्रिका सागरिका, जो संस्कृत माध्यम की पत्रिका है, यहाँ से उन्होंने शुरू भी की थी। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, बहुत सारे भारतीय संस्कृति का सारा ग्रंथ ही उन्होंने संस्कृत में लिख दिया। तो रामजी उपाध्याय जी का बहुत बड़ा बड़ा नाम है। यहाँ पर अभी हमने नाम लिया आचार्य राधवल त्रिपाठी जी, जो वर्तमान समय में संस्कृत के सबसे अधिक चर्चित विद्वान हैं कोई, तो राधा प्रोफेसर राधव त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की है, और इसके बाद हमारे नगर में भी देखा जाए, एक बच्चूलाल अवस्थी जी, हालांकि बच्चूलाल अवस्थी जी हिंदी के अध्यापक, परंतु संस्कृत की जो गजल है, इस समय संस्कृत में गजलें लिखी जा रही हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: और संस्कृत की जो गजल बच्चूलाल अवस्थी जी की है, वो पूरे भारतवर्ष में बड़े ही बड़े सम्मान के साथ पढ़ी। अरे बहुत अच्छी। तो यह, और हमारे नगर में आप देखें तो पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी जी,
1: जी
0: यह बहुत अच्छे रचनाकार, उन्होंने तो 21,000 श्लोकों का अनुवाद किया हुआ है, और उनके अपने मौलिक ग्रंथ भी हैं। उन्होंने रामचरित श्री रामचरित मानसम करके, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामचरित मानस, उसको उन्होंने श्री रामचरित मानसम नाम से पूरा का पूरा संस्कृत में अनुवाद कर दिया
1: जी।
0: पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी जी, बिहारी सत्सई जो बहुत सुंदर ग्रंथ हिंदी का है, वो सुंदर सप्तशती कर करके उसका संस्कृत में बड़ा सुंदर अनुवाद किया। यहाँ पर और भी आचार्यों में पंडित जीवनलाल अग्निहोत्री जी बहुत बढ़िया थे, उनको तो चलती फिरती डिक्शनरी कहा जाता था। यहाँ पर जो है और भी बहुत सारे विद्वान हमारे संस्कृत के सागर में रहे हैं, और उनको तो कायदे से सागर में जो जितने भी संस्कृत के लोग हैं उन पर अच्छा शोध हो सकता है।
1: आपसे ये जानना चाहेंगे कि संस्कृत को आम लोगों की भाषा कैसे बनाई जाए और कैसे बनेगी?
0: जी, यह मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृत हमारे भारत की पहचान है, और संस्कृत को अगर हम ठीक से समझ लेते हैं तो यह बिल्कुल सही है कि हम जो भी भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को बोलना समझना सीख सकते हैं, अच्छा बोलने लगते हैं। हम देखते हैं संस्कृत में आपको दिखाया जाए, 5 उच्चारण स्थान बताए गए, कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, सभी वर्णों का सही सही उच्चारण कैसे, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होगा,
1: बिल्कुल सही
0: वो संस्कृत में बताया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और यह भाषा या किसी भाषा के लिए उच्चारण सबसे बड़ा महत्व रखता है। तो संस्कृत को अगर कोई सीखेगा तो वह अन्य भाषा को भी बोल सकता है। जैसा आपने बताया कि जनभाषा कैसे बने, लोक भाषा कैसे बन जाए, इसके लिए आवश्यक है कि संस्कृत के, जैसा हमने आपको बताया कि बड़े सरल भाषा में बोलने का शिविर आदि आयोजित किया जाता है, लोग थोड़ा सा संस्कृत के शिविरों के आसपास जाएं या संस्कृत के को थोड़ा बोलने का अभ्यास करें, तो 10 दिन में संस्कृत बोली जा सकती है। जितनी बातचीत हम आपसे हिंदी में कर रहे हैं, ये सारी बातचीत हम संस्कृत में भी कर सकते हैं, और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो संस्कृत में बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं आजकल, तो आपके आकाशवाणी और दूरदर्शन में जो हमारे फिल्म के गीत हैं उस पर संस्कृत गीत लिखे जा रहे हैं, उस पर गाए जा रहे हैं, संस्कृत के छंद बहुत अच्छे से गाए जाते हैं। तो संस्कृत जनभाषा बनने लायक भाषा है, और वर्तमान समय में जैसा हमने आपको बताया कि कुछ चीज़ों का परिवर्तन छोड़ दिया जाए, ऐसे द्विवचन को हमने छोड़ने की बात की, ऐसी कुछ चीज़ों को छोड़ करके हम देखें तो संस्कृत बहुत अच्छे से बोली जा सकती है। और संस्कृत के पास सबसे अधिक शब्द भंडार है। हम किसी भी बात को बोलते हैं तो, जैसे मान लीजिए जाना एक शब्द हुआ, तो जाने के लिए तो हिंदी में जाना कह सकते हैं,
1: उसमें तो गमन भी हो जाएगा,
0: वहाँ गमन हो जाएगा, वहाँ वहाँ पर जो है जाना भी कह सकते हैं, अटना मतलब वो भी होता है। हमारा कहना है कि चलने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग ढंग से उसका अभिप्राय हुआ करता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और हिंदी अंग्रेजी आदि भाषाओं में एक ही शब्द से हम काम चलाते हैं, संस्कृत में उन सभी प्रकारों के लिए अलग अलग शब्द हुआ, तो इसलिए वो बहुत ही अच्छी भाषा है उसके साथ।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने हमसे बहुत ही अच्छी बातचीत की, और जो भी सुनेंगे उसे फ़ायदा ज़रूर होना है।
0: जी जी, आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया और संस्कृत के ऊपर आपने ध्यानाकर्षण किया, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि भारत का पुनः गौरव वापस होने वाला है, और हम लोग जो विश्वगुरु की बात करते हैं, सोचते हैं संस्कृत की ओर अगर आएंगे तो निश्चित रूप से यह मार्ग और सरल होगा, ऐसा मानना है।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। आज हमारे साथ थे हमारे स्टूडियो में डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के संस्कृत

विभाग से डॉक्टर शशि कुमार सिंह साहब, आपसे हमने बातचीत की वर्तमान परिदृश्य में संस्कृत की उपादेयता के बारे में। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर जरूर बताएं। हमारा नंबर लिख लें 9770432297, इसे हिंदी में भी सुन लें 9770432297। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। वर्तमान परिदृश्य में संस्कृत की उपादेयता, इस विषय पर डॉक्टर शशि कुमार सिंह, जो सहायक प्राध्यापक हैं संस्कृत विभाग यूटीडी सागर में, इनसे बातचीत कर रहे थे जय शिखर। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 8:50 हुए हैं, आइए संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गैर फिल्मी गीत। सबसे पहले सुनते हैं शुभा मुद्गल के स्वर में निवेदिता जोशी की ये रचना।
1: कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं।

गैर फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं संगीत सरिता कार्यक्रम में आकाशवाणी सागर से। अब सुनते हैं सोनू निगम के स्वर में ये गीत।

सोनू निगम के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे। इसके साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है, 9 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए सुनते हैं सिंघम रिटर्न्स। इस फिल्म से गाना अंकित तिवारी और तुलसी कुमार की आवाजों में, संदीप नाथ के बोल और म्यूजिक है अंकित तिवारी का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है, दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहाँ दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम ज़रूरी समझते हैं कि मुंबई के सिडनम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई।
1: क्या बदतमीजी है?
2: सुनो भाइयों, सुनो।

0: भोली को बदतमीजी कह रही है
1: तो भी हमें क्या करना चाहिए?
0: जो पंचों की राय
1: तुमने लड़की को देखा?
0: देखा
1: लड़की पसंद है।
2: हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।
3: दुश्मन

बंद रहती। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो किसी रियलिटी शो की कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की भांति ही लगते थे। सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद खन्ना को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ खलनायक। इस फिल्म की नायिका थी लीना चंदावरकर।

0: शर्माना।
1: खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफर मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों या फिर कच्चे धागे, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वे खूब जमे और जमकर खूब चले।
2: हाथ आई हुई ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो। जब्बर सिंह इतना पागल नहीं है। तू जिस जमाने की बात कर रहा है उससे तो चंबल की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो गया है।

अभिनेता विनोद खन्ना के करियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया, और बाद में

फिल्मकार और गीतकार गुलजार ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते नजर आए।

यहां से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और इम्तिहान।

इम्तिहान को पास किया और अपने करियर की दूसरी यात्रा में विनोद खन्ना को हासिल हुई लता मंगेशकर की फिल्म लेकिन, जिसमें गुलजार ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण और हटकर भूमिका प्रदान की थी। संजीदगी भरे अभिनय का कमाल देखिए कि बिंदास दिखाई देने वाले विनोद खन्ना को फिल्म चांदनी में ये भी पुकारना पड़ा।

0: विनोद खन्ना के रौबदार अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों।
1: यहाँ एंथनी कौन है?
2: एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है साहब। ओ बाजू के मामले में होगा, तुम इधर ठहरो, अपन अभी देख के आएंगे।
1: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है।
2: ऐसा क्या?
3: जरूर देखा होगा साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लकी मैन।
1: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था, तुम्हारा नाम ही तो एंथनी है ना?
2: हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंजाल्वेस भी लगे लाए, एंथनी गोंजाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ।
0: माना माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन

0: जाने।
1: फिल्म हेरा फेरी।
2: पर चिंता की कोई बात नहीं,
3: नहीं
2: हम हैं तेरे साथ,
3: बिल्कुल
2: और पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात,
3: क्योंकि

0: की है
1: और ये है फिल्म खून पसीना।
0: खून पसीने की तो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
1: अमर अकबर एंथनी।

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई।

मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और राज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन, जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र।

लगती है। चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का, और ये खुशनुमा दौर था 1999 में। विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

अपनी इतनी लंबी अभिनय यात्रा के बाद 27 अप्रैल 2017 को गंभीर बीमारी की वजह से विनोद ईश्वर को प्यारे हो गए। दोस्तों, यकीनन जिस्मानी तौर पर बेशक विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने एक्टर विनोद खन्ना पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। छतरपुर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं सेवा संकल्प अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक जिले में 10,000 से ज्यादा आवेदनों का मौके पर निराकरण किया जा चुका है। राजनगर, खजुराहो, महाराजपुर, बिजावर और नौगांव सहित कई क्षेत्रों में लगे शिविरों में कलेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। खास बात यह है कि इस शिविर से पहले स्कूल, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा रहा है और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी अभियान के तहत लगाए गए आयुष स्वास्थ्य शिविरों से भी ग्रामीणों को फायदा हो रहा है। अब तक 805 लोगों ने आयुष चिकित्सा सेवाओं का लाभ लिया है। वहीं दिव्यांगजनों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के उपकरण निःशुल्क बांटे गए हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में बीते दिनों 111,000 दीप जलाकर मंदिरों और केन बेतवा परियोजना की आकृति उकेरी गई थी। अब बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की। सागर संभाग कमिश्नर दिलीप कुमार ने पाठापुर गांव पहुंचकर बीते दिनों कलेक्टर मृणाल मीना और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के साथ ग्रामीणों के साथ संवाद किया। मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी शंकाओं का मौके पर ही समाधान कराया गया और कलेक्टर ने इस बात का भरोसा दिलाया कि पात्र प्रभावित परिवारों को 100% मुआवजा दिया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक बैंक खाते फेल होने जैसे मामलों में भी करीब 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों से नई बसाहटों में जल्द शिफ्ट होने की अपील की है ताकि वहां सड़क, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं पूरी तरह व्यवस्थित की जा सके। वहीं दूसरी तरफ छतरपुर शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। नगरपालिका की टीम घर घर जाकर कचरा संग्रहण के रूट का सर्वे कर रही है ताकि कचरा उठाने की व्यवस्था ज्यादा प्रभावी हो। वार्डों में गीले कचरे से खाद बनाने और गीला सूखा कचरा अलग रखने की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। स्वच्छता के साथ शहर को हरा भरा बनाने पर भी जोर है। ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल में अमृत हरित अभियान के तहत बीते दिनों 50 से ज्यादा पौधे लगाए गए और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों ने उनकी देखभाल का संकल्प लिया। अब किसानों के लिए एक जरूरी खबर। खरीफ 2026 सीजन में सोयाबीन के भावांतर योजना के तहत छतरपुर जिले में 15 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। किसान उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर तक अपनी सोयाबीन फसल का पंजीयन करा सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीयन कराने की अपील की है ताकि योजना का लाभ लिया जा सके। छतरपुर विधानसभा के ग्रामीण परिवारों के लिए भी अच्छी खबर है। तरपेड़ समूह जल प्रदाय योजना के तहत 104 गांवों में घर घर नल से पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। विधायक ललिता यादव ने बीते दिनों जल शोधन संयंत्र और पानी की टंकी का निरीक्षण कर अधिकारियों को काम तेज करने और अगले 2 महीने में पेयजल आपूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी ग्राम पंचायतों को स्वच्छता गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए। इस अभियान का मकसद गांवों में साफ सफाई के साथ लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। छतरपुर में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण बीते दिनों आयोजित किया गया। जिले की 6 विधानसभा सीटों से 30 मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण लिया। इस दौरान मतदाता सूची में छूटे पात्र लोगों, नवविवाहित महिलाओं और 18 से 19 वर्ष तक के नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया समझाई गई। वहीं जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बीएलओ घर घर जाकर छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ रहे हैं। छतरपुर जिले में गंभीर मरीजों को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ भी लगातार मिल रहा है। अब तक जिले में 16 मरीज इस सुविधा के जरिए उपचार करा चुके हैं। हाल ही में प्रसव के बाद गंभीर हुई ईशानगर की 30 वर्षीय महिला को खजुराहो से एयर एम्बुलेंस के जरिए भोपाल भेजा गया। जिले में श्रवण एवं वाक बाधित लोगों के लिए अनुगूंज से उद्घोष विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस शिविर में प्रतिभागियों को विधिक अधिकार, सरकारी योजनाओं और उन्हें मिलने वाली सहायता की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मध्यस्थता, तनाव प्रबंधन, योग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास भी किया गया। अंत में बात करते हैं रोजगार की। छतरपुर जिले में सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर और हाउसकीपिंग के पदों पर भर्ती के लिए पंजीयन शिविर लगाए जा रहे हैं। जनपद पंचायत बिजावर में आज, नौगांव में 7, बड़ा महलहरा में 8, राजनगर में 9 और छतरपुर में 10 अक्टूबर को इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक लगेंगे, जहां चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के बाद स्थायी रोजगार से जोड़ा जाएगा। छतरपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था सुनील पांडे का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागिनी। श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये हवेली संगीत। कलाकार हैं आज

आचार्य गोस्वामी और गोकुल उत्सव महाराज। श्रोताओं, आपको बता दें, हवेली संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और भक्ति का एक प्राचीन रूप है, जो मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसे बेहद शुभ और पारंपरिक माना जाता है और दिन के 8 पहर के अनुसार इसे गाया जाता है। आइए सुनते हैं आचार्य गोस्वामी और गोकुल उत्सव महाराज के स्वर में ये संगीत।

आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग राग रागनी। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं ठुमरी। कलाकार हैं श्रीमती गिरिजा देवी।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागिनी। कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाया हवेली संगीत। कलाकार थे आचार्य गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। और ठुमरी सुन रहे थे राग भैरवी में, कलाकार थी श्रीमती गिरिजा देवी। राग रागिनी कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता बंधुओं की। आप हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, गायत्री कॉलोनी रहली से हेमराज ठाकुर, राकेश श्रीवास्तव, नवल किशोर नामदेव, राघवेंद्र सोनी, नरेंद्र सोनी, जीतू नामदेव, छोटू नामदेव, उमा सराफ और राम जैन। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करेंगे और सुनवाते हैं आपको लहू के दो रंग फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं श्रोताओं।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली फरमाइश इन श्रोताओं की। हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा, ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा विमलेश और दिव्यांश बघेल। आप सभी श्रोताओं ने व्हाट्सएप पर ये संदेश लिख भेजा और फरमाइश की है फिल्म नसीब के इस गीत की, और इस गीत को आवाज़ें दे रहे हैं डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर। आइए सुनते हैं आप सभी की ये फरमाइश।

अगले गीत की फरमाइश हमसे की इन श्रोताओं ने, मलोट से सतीश मिंगलानी, विशाल मिंगलानी और महाबीर संधु। आदर्श रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड गौर झामर जिला सागर से कुंदन लाल चौरसिया, निर्मोही अंबिका प्रसाद, विवेक कुमार, वीरेंद्र कुमार, कार्तिक मानस, देव व्रत, आराध्य और नैवेद्य चौरसिया। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं साजन फिल्म से ये गीत। आवाज़ें दी इस गीत को अलका याग्निक, कुमार सानू और एसपी बालासुब्रमण्यम ने।

और अब अगली फरमाइश इन श्रोताओं की, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करेंगे और सुनवाते हैं आपको मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी है आशा भोंसले ने।

अगला गीत तो इन श्रोताओं के अनुरोध पर आप सभी ने ये व्हाट्सएप संदेश लिख भेजे, विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु, बाबा, सपना, शिवी, सलोनी और पिंटर बाबू। आप सभी ने ये संदेश कहाँ से लिखकर भेजा है हमें नाम जगह का नहीं दिख रहा है। गांधीनगर गुजरात से अगले श्रोता हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और त्रिषा राठौर। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करेंगे और सुनवाएंगे आपको प्यार झुकता नहीं फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी शबीर कुमार ने।

बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव, उजस्वी यादव, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कभी कभी फिल्म से ये गीत मुकेश के स्वर में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद संपन्न करने की चंचल को दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी सागर है। 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
3: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
3: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
2: जी।
3: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
3: और इसके साथ हमें

0: जिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
1: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
0: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
1: जी।
0: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
1: पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
1: अजीत जी क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
0: विमलेश जी मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
0: तो चलिए श्रोताओं आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
1: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
0: श्रोताओं उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
1: जी।
0: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
1: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
0: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ लेकिन श्रोताओं अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
1: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था। लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
0: और इसी क्रम में श्रोताओं अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
1: क्या हुआ था अजीत जी?
0: विमलेश जी वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी जबकि वे जीवित थे।
1: जी।
0: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
1: जी क्या छपा था?
0: अखबार में छपा था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
1: और श्रोताओं इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी।
0: जी श्रोताओं डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
1: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
0: आशुतोष फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
1: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए
0: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ।
1: जी
0: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
1: वो कौन सी अजीत जी?
0: वो यह है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे

0: मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओं, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
0: तो श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
1: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
0: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके, और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
1: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं, बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए, और हमारा सवाल है,
1: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
0: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है,
1: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
0: जी
1: तो श्रोताओ, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।

0: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए,
1: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
0: क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
1: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
0: अरे मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
1: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
0: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
1: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
0: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देख

0: कर कहता है,
1: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
2: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
1: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
2: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
1: क्या कहा, क्या कहा?
2: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
1: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
0: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
2: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
3: नहीं, अरे ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
4: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
2: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
4: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
0: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
2: अपने मित्र को देखो।
1: खोल दो अपनी आंखें। भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना कठिन है।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
6: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
7: या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
5: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
8: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
9: वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
10: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थी। एक दिन,
11: कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
12: जो आज्ञा आचार्य।
11: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रख।

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।
4: वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए।
5: शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
6: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
7: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है।
0: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
1: फिर बे
8: श्वेत केतु,
9: अष्टावक्र,
8: मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते हैं। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
9: हाँ,
8: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
9: कब चलना है?
8: बस अभी तुरंत।
0: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
10: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
6: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं, कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
1: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
9: बालक, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है?
11: मेरा नाम श्वेत केतु है, हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
6: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूँ।
9: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
6: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दम भी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
0: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
9: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है, जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता, और दिल किसके पास नहीं है? और ये भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
6: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता, और नदी वेग से बहती है।
9: अत्यंत सुंदर।
1: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
9: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं, मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
6: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
12: मिथिलेश की जय हो। मिथिलेश की जय हो। जय हो।
0: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
6: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
1: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा।
9: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं?
6: आप सब अपने आप को महान समझते हैं, और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है, परखा है मन की आंखों से?

0: मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
1: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझा कर स्पष्ट करें।
0: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
1: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी। वाक द्वंद्व का अंतिम दिवस है आज। वाद विवाद करने के लिए मैं इन होनहार बालकों को यज्ञ मंडप में महापंडित बंदी से मिलने की अनुमति देता हूं। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्दालक के शिष्य अष्टावक्र और दूसरी वेदी पर राजपंडित बंदी।
2: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक, और इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
2: मुकुल सिंह,
3: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के इस सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर। 11:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आवाज थी जुबिन नौटियाल की।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गालिब का ये कलाम।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और आप सुन रहे थे गालिब का कलाम। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे मधुशी का गाया ये पारंपरिक गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात

0: बात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज विनोद खन्ना, जाने माने अभिनेता, जी हाँ, जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना का जन्मदिन है। हम सभी जानते हैं कि उनकी पर्दे पर एक शख्सियत अलग पहचान रखने वाली थी, है ना? उनकी आवाज़, उनका व्यक्तित्व और अभिनय में एक खास ठहराव था और हर किरदार को वो यादगार बना देते थे। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उन्हीं को याद किया है उनकी फिल्मों के जरिए। किशोर कुमार की आवाज़ है, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग, गीतकार फारूक केसर, संगीतकार बप्पी लाहिड़ी।

कार्यक्रम में अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी।

मेरी जान का दुश्मन हाय हाय हाय हाय सैया बल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी जान का दुश्मन हाय।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: हम तुम और वो, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे। स्वर आशा भोसले और विनोद खन्ना के, वर्मा मलिक के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

Operation!

0: बोले भरे भरे
1: हरे हरे
0: तू काहे डरे डरे
1: हरे हरे
0: आज चले तुझा
1: राधे श्याम।
2: और आइए अब सुनते हैं साहिर के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन, आशा भोंसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजें। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गरम खून। इसे संगीत में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अनजान का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध की आवाज सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम खून पसीदा।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। गीतकार गुलशन बावरा हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में सुनिए। फिल्म का नाम है हेरा फेरी। इसे इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज याद किया मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को, और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दोस्तों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए आज फिर आपसे हमारी मुलाकात हो रही है ना। और दोस्तों, कुछ मुलाकातें बस मुलाकातें नहीं होती, वो एक एहसास बनकर दिल में उतर जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में चलिए उन्हीं खास मुलाकात की गलियों में, जहाँ पहली नज़र, पहली बात और पहली मुलाकात एक खूबसूरत याद बन गई हमारी जिंदगी में, उसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। तो हमारी इबारत आज क्या है आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपनी इबारत या यूं कहें टेक्स्ट पढ़ देते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी में भी वो पहली मुलाकात किसी से भी हो सकती है, उसका जिक्र आप भी अगर करेंगे तो कार्यक्रम और भी अच्छा लगेगा और ये मुलाकात और रोचक हो जाएगी। हमारी आज की इबारत है,

आपको अपनी पहली मुलाकात याद है? कभी वो पहले पहले प्यार की मुलाकात जैसी खूबसूरत रही होगी, कभी कुछ और कभी लगता है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, बस इसी ख्याल से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वैसे सच कहें तो कई बार ये मुलाकात एक बहाना है, असली बात तो दिल की होती है। और किसी खास से मिलकर लगे तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, फिर दो बेचैन दिल मिल जाएं तो दो चैन चाहने वाले दो चैन ना चाहने वालों की मुलाकात हो सकती है, और पता ही नहीं चलता कि कब छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई है। फिर लगता है जैसे मुलाकातों का मौसम आ गया, मगर कुछ मुलाकातें इतनी हसीन होती हैं कि कल की हसीन मुलाकात के लिए आज की रात की यादों में कट जाती है। और कभी कभी दिल डरता है कि कहीं जाने वाले से मुलाकात न होने पाए तो। तो बस आज के इस सफर में मुलाकात के इन्हीं रंगों से हम रूबरू होने वाले हैं। चलिए तो सुनते हैं कार्यक्रम में कुछ खास गीत, ऐसे गीत जहां मुलाकातों का जिक्र है और जिंदगी की कुछ खास मुलाकातें हमारे साथ उम्र भर चलती हैं इन गीतों की तरह। किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

किशोर कुमार और आशा भोंसले को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था द ग्रेट गैम्बलर। हमारे श्रोता अपनी अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी टिप्पणियों के तरह से। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं मगर अपने पीछे भावनाओं की ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो वर्षों तक मन में ताज़ा रहती हैं। पहली मुलाकात की झिझक, आंखों में छिपी अनकही बातें, दिल की बढ़ती धड़कन और किसी अपने के साथ बिताए कुछ पल, इनमें एक पूरा संसार समाया होता है। कभी कोई मुलाकात प्यार की शुरुआत बन जाती है तो कभी किसी बिछड़े हुए शख्स से आखिरी मुलाकात जीवन भर की स्मृति। मुलाकातें जिंदगी की किताब के वे पन्ने हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात और बिछड़ना, फिर उसी मुलाकातों की याद में खो जाना, अगली मुलाकात तक प्रेमियों की तड़प आज के गीतों में है। एक श्रोता ने लिखा है कि पहली मुलाकात, प्यार की मुलाकात, यादगार मुलाकात और बिछड़ने के डर तक, ये सभी बातें इस मुलाकात में शामिल हैं। कुछ मुलाकातें पल भर की होती हैं लेकिन उनकी यादें उम्र भर दिल में रहती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी जिंदगी में अचानक कोई मिलता है और हमें पता भी नहीं चलता, वो मुलाकात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली है। पहली मुलाकात भी कितनी अजीब होती है ना, न कोई वादा न कोई रिश्ता, बस दो अजनबी होते हैं लेकिन जाने न जाने क्यों एक शख्स दिल को अपना सा लगता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुलाकात यानी दिलों का काव्यात्मक सफर, ये केवल सवाल जवाबों का सिलसिला नहीं बल्कि दो दिलों के बीच बुना हुआ एक नाजुक रेशमी पुल है। एक उत्सुक मन दूसरे समृद्ध मन की गहराइयों में झांकने का प्रयास करता है, तब शब्द और अर्थों के पर्दे एक एक करके आसानी से खुल जाते हैं और कोई नहीं कह पाता कि आज की मुलाकात बस इतनी। वाह क्या बात है, बहुत ही काव्यात्मक तरीके से आपने अपनी बात कही है। और आगे आपने कल के का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने कहा है कि रिश्तों की गहराई समय की मोहताज नहीं होती बल्कि भावनाओं की सच्चाई पर टिकी होती है। अक्सर सफर के दौरान किसी बस, ट्रेन या हवाई जहाज में पहली मुलाकात किसी ऐसी व्यक्ति से हो जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते। वो कुछ घंटों का सफर होता है मगर बातें करते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं और स्टेशन आते ही अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। शायद हम दोबारा कभी उनका चेहरा भी न देख पाए, न ही उनका नाम याद रख पाए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के दौरान मिली मुस्कान, उनकी कही कोई गहरी बात या उनका वो निस्वार्थ व्यवहार हमारे भीतर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। बहुत सुंदर। अगला गीत सुनने से पहले आपके लिए हम लाए हैं दो सवाल, बहुत प्यारे से और सीधे साधे से। आप अपनी जिंदगी को, अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को जब खंगालेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। हमारा पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आज तक आप नहीं भूले। सवाल एक बार फिर से कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज तक नहीं भूले। कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गहरी बात। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है। सवाल एक बार फिर कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है। खंगालिए अपनी यादों को, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपनी स्मृति को, और याद कीजिए वो दिन जब आपको कोई ऐसा शख्स मिला, वो कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, है ना, कोई भी, या आपने किसी जगह पे जाकर प्रकृति से मुलाकात की हो, आपको लगा हो कि वाह क्या क्या सुंदर नज़ारा है। मुलाकात कहीं भी किसी से भी किसी भी रूप में हो सकती है, ये आप सोचिए।

ये कि आपकी वो पहली मुलाकात कौन सी थी जिसे पाकर आप धन्य हो गए, या आपको आज तक याद है उनके कड़वे अनुभव। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन।

जी हाँ, तो पहली मुलाकात इतनी ही रोमांचक होती है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, उसका ही जिक्र आपको करना है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कितनी लंबी जुदाई, एक मुलाकात के लिए तरस रहे थे नैना, लेकिन जितनी लंबी जुदाई थी उतनी ही प्यार से सराबोर थी वो मुलाकात। अरे आपने इशारों इशारों में बात लिखी है, लिखते कुछ तो हमें पता चलता कि कौन सी थी वो मुलाकात। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गीतों को चुना गया है, मुलाकात जैसे शब्द को परिभाषित करने के लिए, वैसे तो मुलाकात कब, किससे और कहाँ, जीवन के किस मोड़ पर हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, परंतु कुछ मुलाकातें जीवन भर याद आती हैं। हाँ, तो बताइए ना, कौन सी ऐसी मुलाकात थी आपसे जो जीवन भर से आपको याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें भी कितनी अजीब होती है, वैमनस्यता के सारे जख्म एक पल में सी देती है, न कोई शिकायत बचती है न कोई गिला, बस निगाहें झुकती हैं और दिल सब कह देता है। मुलाकातें भले ही चंद लम्हों की, ऊपर उनकी खुशबू उम्र भर यादों के गुलदस्ते में महकती रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें ही मोहब्बत की मंजिल मुकम्मल करती हैं, ये वो मंजर है जहाँ मिलकर महबूब और महबूबा एक दूसरे की मुखातिब होकर मानसिक मनोमालिन्य दूर कर मिलन के मधुर मर्म का संज्ञान लेते हैं। आपसी मतभेद और मनमुटाव दूर करने में मुलाकातें ही महत्वपूर्ण माध्यम है, वरना मोहब्बत के मारों को इस मोहब्बत में मृत तृष्णा भांति अतृप्तता ही महसूस होती है। और आगे आपने हमारी तारीफ में भी लिखा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सफर तो क्या, विविध भारती ने जिंदगी ही सुरीली कर दी है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने 36 साल पहले का वो दिन याद करा दिया, जब मैं अपने पहले और आखिरी प्यार से पहली बार मिली थी, यानी मेरे पति देव मुझसे मिलने आए थे, साथ में उनकी दीदी भी थी और हम पूरा दिन साथ साथ रहे, शॉपिंग की और फिर 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। ये मुलाकात एक बहाना है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला गाना यही आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुलाकात याद नहीं बनती, मगर कुछ मुलाकातें दिल में ऐसी उतर जाती हैं कि वक्त बीत जाता है पर उनकी याद कभी नहीं जाती। वहीं एक श्रोता का कहना है कि क्या जिस दिन हम विविध भारती से मिले उसे भी प्यारी मुलाकात कहा जा सकता है, पर हमें उस मुलाकात की न तो तारीख याद है न ही दिन, बस इतना याद है जब पापा विविध भारती चलाते थे तब हम बहुत छोटे थे, हमें लगता था इसके अंदर कैसे रहते हैं लोग, कहाँ से आवाज़ आ रही है। बाद में धीरे धीरे समझ आया कि हम दीवाने हो गए इस विविध भारती के, क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही हाल हर बच्चे का होता है जब वो पहली बार रेडियो सुनता था कि भाई इसके भीतर कौन है, कहाँ बैठते हैं लोग, ये हर बच्चे के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की सालगिरह पर लाइव, अच्छा, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपकी बातों की तरह ही आप चुलबुली और प्यारी दिखती हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, शुक्रिया, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि ये भी एक तरह से आपसे मुलाकात ही हो गई, रूबरू न सही पर हुई तो। हाँ बिल्कुल होती है आपकी और हमारी मुलाकात तो। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबादत मुलाकात पर आधारित है और आपसे मुलाकात होगी 1:00 PM। जी हाँ, देखिए हो भी गई। एक श्रोता ने कहा है कि बस कुछ टाइम से ही मैं कमेंट करने लगी हूँ और मैंने इस कार्यक्रम में अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, आपकी आवाज़ भी अच्छी लगती है। चलिए, आपने शुरू कर दी है तो इस शुरुआत को अंत तक रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है, जब आप किसी से दिल से मिलना चाहते हैं और वो मुलाकात नहीं हो पाती तो ये अधूरी चाहत आत्मा को बहुत गहरी बेचैनी और तकलीफ दे जाती है, इसे ही शायद लोग इंतजार का दर्द या अधूरी मुलाकात की कसर कहते हैं। जब मन भावनाएं गहरी हो तो ये दूरी और भी ज्यादा भारी महसूस होती है और ये सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात नहीं होती, ये किसी से भी हो सकती है, दोस्त परिवार रिश्तेदार, तो समय रहते मुलाकात करके गिले शिकवे दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अफसोस ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सुनते हैं ये गीत खानदान फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श लायलपुरी की रचना और खय्याम साहब की धुन। आप भी अपनी जिंदगी की वो मुलाकात बताइए जिसे आपको लगा ये मुलाकात तो बहाना था, असल में तो हमें मिलना था।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखी है, लेकिन इससे पहले हम सवाल दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज भी भूले नहीं। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए बहुत खास है। तो हमारे श्रोता लिखती है कि चेहरे की रौनक छीनने वाले से कभी मुलाकात न हो तो बेहतर है, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम किसी से मिलते हैं और सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करता, आपको ठेस पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो ऐसी मुलाकात कोई भी नहीं करना चाहता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी अनजाने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ यादों में बस जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। कभी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होती है तो ये दिल में बस जाती है और मिलने की चाहत बढ़ जाती है और हम सफर भी बन जाती है। आज उनसे पहली मुलाकात, ये जो गाने हैं इन्हें पसंद हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कोई मुलाकात कितनी अजीब होती है, न कोई तैयारी, न कोई उम्मीद, न ये आभास की सामने आया ये अजनबी कभी इतना

अपना हो जाएगा। बस कुछ पल में कुछ अनकही बातें आंखों के बीच ठहर गया, एक अनजान सा संवाद, कुछ रिश्तों की नियति साफ चलना नहीं, याद बनकर उम्र भर साथ रहना होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में बड़ी देर से मिलते हैं मगर उनसे मुलाकात दिल में ठहर जाती है। उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में उनकी जगह हमेशा से खाली थी। जिंदगी में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती न मुलाकातें, कभी कभी किसी विशेष से मुलाकात उस ईश्वर की मौन कृपा की तरह है जो ये एहसास दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप किसी के लिए पूरी दुनिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, आपकी अंतिम पंक्ति ने दिल जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंदीदा प्रस्तुतकर्ता हैं आप। अच्छा, आज मैंने पहली बार कमेंट किया है, प्लीज़ आप पढ़िए, प्रोग्राम में रोज़ सुनती हूँ। देखिए हमने कर दिया, आपने कुछ लिखा नहीं, आप लिखती तो हम उसे भी पढ़ देते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा जॉब लग गया। दोनों घरों के बड़ों के द्वारा हमें पसंद करने के बाद मेरी होने वाली धर्मपत्नी और मुझे अजमेर के रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात कराई गई। वो जो नज़रें झुकाए बैठी थी और मैंने मन में माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए मन में ठान लिया था कि बस यही है मेरे सपनों की रानी। बाद में अकेले में खूब बातें भी करी थी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूली जीवन में ट्यूशन पढ़ने के दौरान मेरी गलतियों पर मास्टर जी के डांटने पर उसकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, फिर नजरें झुका लेना, उफ, पहली मुलाकात ऐसे ही मुस्कुराने पर कई महीनों तक चली। कुछ हुआ तो नहीं मगर वो मुस्कान भरी मुलाकात अभी भी दिल को कोरेद देती है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं जनाब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। अरे तो लिखते हैं, अगर आपको पहली एक तरफा प्यार हुआ था तो बताते कैसे हुआ, क्या हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार नहीं होता, विश्वास होता है, बाद में प्यार होता है। ये अपने अपने अनुभव होते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सफ़र की हर मुलाकात यादगार बन जाती है और आपका साथ भी बहुत अच्छा लगता है। सुंदर गीत के साथ छोटी सी मुलाकात प्यार बन जाती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हमारी मुलाकात सुरीला सफर से हो जाती है तब किसी अन्य की मुलाकात की जरूरत होती ही नहीं है। जब आप किसी कमेंट्स को पढ़ने के बाद कहती हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है, बस मजा आ जाता है। तो बस आपका इस सिलसिला बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। अरे आप लोग इतनी शानदार समीक्षाएं भेजते हैं, टिप्पणियां भेजते हैं तो वो निकल जाता है मुंह से कि वह क्या बात है, दाद देनी पड़ती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी, याद है मुझे आज तक। अरे बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकात जीवन में ऐसी होती हैं जो भूल कर भी याद रहती हैं, कभी कभी ख्यालों में वो मुलाकात यूं ही याद आ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें वक्त के दायरे से परे होती हैं, वो घड़ियों के सेकंड या मिनटों में नहीं बल्कि उस शिद्दत से नापी जाती हैं जिसे दो रूहें एक दूसरे को छू लेती हैं। वक्त का पहिया भले ही आगे निकल जाए पर दिल के किसी कोने में वो एक पल हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उन्हीं पलों की खामोशी में एक ऐसी आवाज़ होती है जो भीड़ में भी तन्हाई का एहसास नहीं होने देती और ज़िंदगी के लंबे सफ़र को एक मीठी महक से भर देती है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत गहरी बात आप लोगों ने लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी मुलाकात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बहुत पुरानी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहब्बत ज़िंदगी है। सुना है इस फिल्म का नाम आपने, बताइएगा अगर सुना है तो। और इस फिल्म में कौन कौन थी ये भी बताइएगा। SH बिहारी के बोल हैं और OP नैयर की धुन।

तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही सुंदर विचार लिख रहे हैं कि क्या लिखा है, हाँ लिखा है कि नमस्कार, मुलाकात अजनबी से हो, पहचान वाले से, छोटी हो या बड़ी, समाज में चलता रहता है। कुछ मुलाकातें तो सीने में याद बन जाती है, किसी से मुलाकात में डर भी लगता है और कोई मुलाकात प्यार में बदल जाती है और कई मुलाकातों से आपसी गलतफहमियां भी दूर होती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात फेस टू फेस नहीं बल्कि ऑनलाइन एक दोस्त से हुई और पहली बार ही एक विशेष प्लेटफॉर्म पर पता चला। पता नहीं क्यों उनके नाम के आगे रुकी और कुछ दिनों पश्चात ही उनका मैसेज आया और हमारी बात हुई। ऐसा लगा जाने कब से एक दूसरे को जानते हो पर आज तक कभी मिले नहीं हम। एक रिश्ता रूहानी था जहाँ देखने की कभी चाहत ही नहीं हुई। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात लिख दी आपने। और आपके इस बेबाकी को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी बात, अपना दिल हमारे सामने रखा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो कहूँगी कि आदमी किसी से भी मिले तो कभी नहीं बिछड़े। मैं दो शख्स को हर दिन तलाशती हूँ। पहली मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, नाम था उषा शाह। इन दिनों नहीं मिल रही हैं और मैं वो असम में थी और मैं भागलपुर में। दूसरों में जब मैं दिल्ली में थी तो वो मिली, सिर्फ ये पता कि वो उत्तर प्रदेश में थी। उनके लिए भी मेरे मन में बहुत बेचैनी होती है। आपने अपनी बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार नहीं लिखा, इसलिए हमें पढ़ने में दिक्कत आई है। कुल मिलाकर ये पता चला कि आपकी दोस्त आपसे बिछड़ गई है, जिसको आप ढूंढ रही हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी 3 अक्टूबर को इला अरुण जी से आपकी मुलाकात हुई। इससे पहले इला अरुण जी ने इस मुलाकात में मोरनी बागा नाचे पर सभी महिला उद्घोषकों को नृत्य करवा दिया, जिसमें आपका नृत्य भी देखने लायक था। ये मुलाकात आपके लिए यादगार बन गई होगी। ऐसे ही कई मुलाकातें हैं मेरे साथ भी हुई। उन दिन मेरी पोस्टिंग संसदीय ग्रंथालय में थी, वहीं पर लोकसभा टेलीविजन के स्टूडियो में भी थे, जो अब भी हैं। चमड़े से बनी सफ़ेद चप्पल पहने, सफ़ेद पतली कटारीदार मूछें, सिर पर सारे सफ़ेद बाल, सफ़ेद रंग का ही कुर्ता पजामा पहने एक लंबी कदकाठी के व्यक्ति चले आ रहे थे। उनसे एक मुलाकात नाम से इंटरव्यू होना था। इस पूरे इंटरव्यू को मैंने स्टूडियो में बैठकर देखा। इंटरव्यू के बाद मैंने उनके पैर छुए और जलपान के बाद उन्हें छोड़ने गेट तक आए वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने शख्स थे, गीतकार गुलजार साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज मुलाकात पर सुरीला सफर चलेगा, ये वाकया याद आ गया।

देखिए, आपने अपने दिल को खंगाला ना, गाने तो आपने सारे गद्यांश में लिख ही दिए थे, इन मुलाकातों के बीच एक गीत भूल के जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपने दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई। बहुत सारे गीत हैं मुलाकातों पर, है ना। और वहीं एक शख्स लिखते हैं कि अपने शहर में घूमते समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से अचानक मुलाकात हुई और पहली बार ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हुआ, पर पतिदेव ने कहा कि ये वही हैं जो हम सोच रहे हैं। फिर हमने उनके पास जाकर हाय हेलो किया और ये मुलाकात यादगार बन गई। बहुत सुंदर, आपने हमारे सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज जाते समय अक्सर मिल जाते थे, कॉलेज जाना क्या छूटा, मुलाकात होना ही बंद हो गया। अरे क्या बात है, ऐसी बात, चलिए क्या कहूँ मैं आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ देर से पहुंचे हैं आपके कार्यक्रम में लेकिन आखिर मुलाकात हो ही गई है, विविध भारती से इतना प्यार जो है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर से 12 किलोमीटर दूर गांव जामनिया खुर्द से कन्हैया लाल और कई लोग मिलकर आपकी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसा ही हम चाहते हैं। बहुत सुंदर, आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि जवाबी संदेश दिया आपने, यानी हमारे सवाल का जवाब दिया है कि टीचर की पोस्ट देनी थी, मुलाकात कहनी थी, कम शब्दों में दिल जीतने वाली बात, अनपेक्षित सवालों का आघात बन गई थी बुरी हालात, फिर भी न जाने कैसे मिल गई थी नौकरी की सौगात। बहुत सुंदर। और एक श्रोता कहते हैं कि उस जमाने में तो सब कुछ अरेंज करके ही किया जाता था, इसलिए पहली मुलाकात भी प्री प्लान्ड ही थी। फिर दूसरी मुलाकात के बाद तो शादी हो गई, पर उसके बाद की मुलाकात जो ही उसने अरेंज मैरिज वाले भाव को ही बदल दिया और रिश्ता जान पहचान से बढ़कर पक्का हो गया और उस मुलाकात के दम पर हमारे प्यारे रिश्तों की नींव पड़ी है और ये मुलाकात हमेशा के लिए यादगार बन गई है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कि जब आप पहली बार मिली होंगी और उसके बाद जब आपका ब्याह उसी शख्स से हो गया तो अब जिंदगी तो बस क्या बन गई, बहुत शानदार है ना। आइए सुनते हैं फिल्म पालकी का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद साहब की धुन। कभी ख्वाबों में आपकी भी मुलाकात किसी से होती है, बताइएगा।

तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। आपकी भी कभी ऐसी कोई मुलाकात हुई हो ख्वाबों में, सपनों में और अचानक, है ना? तो बताइएगा कम शब्दों में। बहुत कम समय हमारे पास है और श्रोता बराबर जवाब दे रहे हैं हमारे सवालों का। एक श्रोता लिखते हैं कि फेसबुक विविध भारती से जुड़कर बहुत सारी ऐसी सहेलियां मिल गई, पता नहीं इनसे मुलाकात कब होगी, पर ऐसा लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। हम फोन पर हमेशा दिल खोल कर बात करते हैं, तब नहीं लगता कि मुलाकात कोई जरूरी है। क्या बात है, आप फेसबुक से जुड़ गई हैं और एक परिवार बना लिया है आप सभी लोगों ने, तो जाहिर है सभी सखियां आपस में बात करती हैं, है ना? क्या बात करती हैं आप लोग बताइए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अभी पिछले महीने यूनुस खान जी इंदौर आए हुए थे और मैं पास में ही रहता हूँ, पर यूनुस खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ा अफसोस हुआ। अरे कोई बात नहीं, वो जब दोबारा आएंगे तो पता करिएगा कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और आपको कहाँ मिलना है। कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी उनसे और आपका ये संदेश हम पहुँचा भी देंगे उन तक। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि धर्मेंद्र जी, और जो आपने पूछा था मोहब्बत जिंदगी है, ये फिल्म एक श्रोता ने देखी है और कहते हैं कि इसमें धर्मेंद्र और राजश्री थे। अच्छा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, वो मुझे देखने आए और बस बात गई बन गई और शादी हो गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़की वालों ने मुझे देखने के लिए घर बुलवाया, लड़की के बड़े भाई ने कई प्रश्न किए, सभी के सही जवाब दिए। बाहर छोड़ने आए तब बड़े भाई ने कहा और कोई सेवा, तो मैंने जवाब दिया कि मेहरबानी बनाए रखें, तो बड़े भाई ने कह दिया कि अभी तो आगे सोच कर करेंगे। हम दोनों कंफ्यूज थे, शर्म भी आ रही थी, आगे चलकर एक मुलाकात रिश्ते में बदल गई है और जल्दी ही शादी भी हो गई है। क्या बात है, बधाई हो। एक श्रोता लिखते हैं कि यादगार मुलाकात तो हमारे शहर अजमेर में एक कार्यक्रम में महान संगीतकार आदरणीय आनंद जी आए हुए थे।

क्या बात है, कल्याण जी, आनंद जी, वाले आनंद जी। कार्यक्रम के बाद मैं उनसे मिला और मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, अरे आप सिंधी हैं? अरे भाई मैं भी सिंधी हूँ, कच्छ का रहने वाला हूँ और वो मुझसे

नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो आप फ़ोन करते रहिए, ऐसी क्या बात है। बहुत सारे लोग पता है बरसों बरसों से फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे पतिदेव से जब पहली मुलाकात हुई तो वो बताते हैं, पर एक वादा करिए, हंसेंगी नहीं आप। अच्छा, नहीं हंसेंगी पर हमें आप लोगों के संदेश पढ़कर हंसी आ जाती है क्योंकि उसमें प्यार और अपनत्व और मिठास छुपी होती है, तो मैं हंसे बिना नहीं रह पाती। चलिए, नहीं हंसूंगी, पढ़ तो दूँ। आपने लिखा है कि कोई न आपके साथ सभी श्रोता भी हंसेंगे। अरे श्रोताओं मत हंसिएगा, है ना। वो लिखती हैं कि हम उनसे मिले जब हमने उन्हें वरमाला डाली, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें देखा ही नहीं था। इतने हम डरे हुए थे, नहीं बात की थी कभी। आज सोचते हैं तो हंसी आ जाती है। और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कैसा था पहले, हम तो ऐसा कभी नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आप खुद ही हंस पड़ी हैं और आप हमें हंसने के लिए मना कर रही हैं। बिल्कुल वो समय ऐसा था जब शादी होती थी माता पिता की बातों से, माता पिता की सहमति से, और लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, लेकिन वो डर, वो भय, वो होता था दोनों तरफ, लेकिन लड़कियों में खास तौर से ज़्यादा होता था। लेकिन आपके बच्चों ने सही कहा कि आज समय बदल गया है, ज़िंदगी बदल गई है, मुलाकात करने के तरीके बदल गए हैं और बहुत ज़िंदगी का फलसफा भी बदल गया है। तो मुलाकात करते हुए हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये फिल्म है लेडीज टेलर। इसके बारे में भी बताइएगा, आपने इस फिल्म को देखा था या इस फिल्म के गाने आपको पसंद हैं, कौन कौन से गीत हैं। फिलहाल सुनिए ये गीत।

0: जी हाँ, दो चाहने वालों की मुलाकात कैसी होती है, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अभी दिल खोलकर आपने लिखा नहीं है। चलिए फिर कभी किसी कार्यक्रम में दिल खोलिएगा और बताइएगा कि कभी किसी की मुलाकात क्या रंग लाई आपके जीवन में, चाहे वो मुलाकात सामने हुई हो, ख्वाबों में हुई हो, कहीं भी हुई हो, है ना। अब अगले किसी कार्यक्रम में आप दिल खोलकर अपनी बात रखेंगे। वैसे एक श्रोता लिखते हैं कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कई गाने जैसे आप ही गा रही हैं। अच्छा, मुलाकात तो हमारी अपने होने वाली धर्मपत्नी से हुई थी, वो बहुत शानदार थी, जो हमें हमेशा याद रखती है, रहती है, बहुत सुंदर, रहनी भी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हम एक बार बैंकॉक से पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, नागपुर के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, उसी समय मुझे पुराने महाभारत के श्री कृष्ण यानी कि नितेश भारद्वाज अपने सामने बैठे दिखे। मैंने अपने पति के कान में धीरे से कहा और बाद में हम दोनों ने उनसे मिलकर फोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर, वो पल आपको बहुत याद होगा, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती से तो मुलाकात सबसे जब से होश संभाला है तब से हो गई थी, आज भी हो रही है, बिल्कुल होती रहनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर सपनों में मुलाकात की बात आप करते हैं तो हमें सपने तो बहुत आते हैं और कई दिन तक कई नए नए चेहरों से मुलाकात तो होती है, लेकिन सुबह उठकर फिर भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रहता, लेकिन नए नए चेहरे सपने में अगर आते ही रहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि युवाओं को बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं, तो ये बात सच है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबादत पर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, वैसे तो प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को हम विविध भारती के पेज पर देखते हैं, लेकिन एक तमन्ना है कि आप सभी से रूबरू मिलने की उम्मीद है और मेरी ये तमन्ना ज़रूर पूरी होगी। क्या बात है। तो चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक अब आ गए हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम चरस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गुड नाइट। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
0: हमें गुड नाइट नहीं कहना है अभी, तो हम रात को कहेंगे, अभी तो गुड डे चल रहा है।

तो दोस्तों, इस कार्यक्रम से अब हम भी जुदा होते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए कार्यक्रम में और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और साथियों की आवाज में एक गीत। फिल्म का नाम है सम्राट। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। भोपाल में आज सीएम यूथ कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं से सीधा संवाद किया। लाल परेड मैदान में आयोजित कॉन्क्लेव में प्रदेश भर से 20,000 से अधिक युवा शामिल हुए। संवाद के दौरान एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कृषि क्षेत्र में लगातार वैल्यू चेन विकसित करते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।
1: सच में हमारी सरकार के माध्यम से आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग से लगा करके खेत तक लगातार वैल्यू चेन बनाते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की, खास करके हमारे कई सारे युवा मित्रों ने अब अपनी कृषि में बहुत सारे प्रयोग भी किए। अब तो ड्रैगन फ्रूट भी हमारे यहाँ हो रहा है, ये बदलते दौर का समय है, और मशरूम की खेती से भी कमा रहे हैं। ऐसे में हमारे राज्य ने पूरे देश में गत वर्ष ही 14,45,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन किया। जोरदार ताली बजाए।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाएगी। इसमें एमपीपीएससी 2 बार परीक्षा कराएगा, साथ ही 12 मेडिकल कॉलेज और 12 नई यूनिवर्सिटी भी खोली जाएंगी, जिससे युवाओं को नए स्किल्स सीखने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। नक्सल उन्मूलन के बाद कान्हा टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में वन अमले की फील्ड गतिविधियों में तेजी आई है। अब वन अधिकारी और कर्मचारी दिन रात बेझिझक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एमस्ट्राइप पेट्रोलिंग एप्लीकेशन के जरिए पैदल गश्त को प्रभावी बनाया गया है और रेंज ऑफिसर, एसडीओ और फील्ड स्टाफ की टीमें रात में भी नियमित निगरानी कर रही हैं। इस बदलाव का असर पर्यटन और स्थानीय रोजगार पर भी दिखाई दे रहा है। कान्हा, किसली, मुक्की और सरही क्षेत्रों में पर्यटक अब पहले की तुलना में अधिक सहजता से पहुंच रहे हैं। वहीं बफर क्षेत्र से लगे गांवों में ग्रामीण बैठकें और विकास गतिविधियां भी नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। उप संचालक पीके वर्मा ने बताया,
2: मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व सब प्रतिदिन कोई ना कोई एक जो है पूरी रात भर रात्रि में गश्ती में रहते हैं तो पूरे क्षेत्र में, जबकि उस समय पर थोड़ा सा ये चीज़ अवॉइड करना होती थी। जैसे कि मुख्यालय या पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी निर्देश मिलते थे कि आप इस तरीके से टाइम बाय टाइम विभिन्न क्षेत्रों में न जाएं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी पूरा सभी तरफ हमारे क्षेत्र में स्टाफ, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, सभी जगह जा रहे हैं।
0: बालाघाट जिले के करंजा में आज आरएसएस सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत नेत्रालय का लोकार्पण करेंगे। तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस की पैतृभूमि करंजा में लोकार्पण कार्यक्रम होगा। नेत्रालय का संचालन माधव नेत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस सेवा प्रकल्प से लांची, किरनापुर और आमगांव क्षेत्र के ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों में नेत्र चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ दी है। 37 साल की हरमनप्रीत ने गुवाहाटी में बीसीसीआई की समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला सुनाया। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने पिछले साल अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था और टीम ने एशियाई खेलों में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। हरमनप्रीत आगे भी सभी फॉर्मेट में एक खिलाड़ी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करती रहेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में बारिश का दौर फिर शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, मऊगन, सीधी, सिंगरौली और शहडोल में गरज चमक के साथ

हल्की बारिश हो सकती है। नरसिंहपुर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छूटे हुए और पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। छतरपुर में भी आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के तहत जिले में 1 से 19 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों को 8,15,429 हितग्राहियों को कृमिनाशक दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10, आपकी जगह 2:15, 10 मिनट होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और 19 स्लिप वे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
1: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं।

0: असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मधुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मधुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
1: नर्मदा नदी में साधु पेड़ पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
1: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
3: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है। हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
1: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
6: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
7: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
7: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। CJI ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
8: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने होदेदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला

0: माहे दक्षिण आंध्र कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: यह अवस्थी आशा भोंसले की और फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत दिया था रवि ने।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें।

0: साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में अभी आपने अनजान का लिखा ये दो गाना सुना। स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था जाली नोट।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काला बाजार का गीत, शब्दकार शैलेंद्र और संगीत ओ एस डी बर्मन का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, मुझको हुई ना खबर, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सदाबहार नगमे का अगला गीत सी रामचंद्र का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल। फिल्म का नाम है सरहद और आवाजें आशा भोंसले और सी रामचंद्र यानी चितल।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे, आवाज गीता दत्त की। इस गीत को शकील नोमानी ने लिखा है और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। पंडित भरत व्यास की बोल, एसएन त्रिपाठी की धुन, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजें। फिल्म का नाम है लाल किला।

से उड़ते ये बाल तेरे, क्या नखरे दिखाते कमाल तेरे, वो तेरी पतली कमर का जवाब।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखियों को सखियों सखियों को और आरती आपको भी नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथी सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज बहुत सारे विषय हैं जिन पर हमारे जो फेसबुक से जुड़े श्रोता हैं उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं।
2: बिल्कुल, लेकिन
1: फिर भी हम विषय बताते हैं कि
2: हाँ, जिससे कि हाँ, जैसे कि हम हमारे जो श्रोता उनको एक बार हम अपने मुंह से बता सके।
1: हाँ, अभी हर श्रोता नहीं जो फेसबुक पर जुड़ा हुआ है, कई लोग सिर्फ रेडियो सुनने के लिए अपने आनंद के लिए भी सुनते हैं।
2: हाँ, ये तो है।
1: तो भले वो हमें संदेश ना करें लेकिन उनके लिए भी क्या विषय है ये जानना जरूरी है। तो आज है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस, इसके बारे में बात होगी।
2: और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं संगीता देवी जी जो कि हैं संस्थापक दिया माटी की, और साथ ही हम लेकर आए हैं मुहावरों की दुनिया।
1: तो कौन सा मुहावरा है भाई, आज किस मुहावरे पर हम बातचीत करने
2: आज
1: वाले?
2: हम मुहावरे पर बात करने वाले हैं कि अक्सर जो हम लोग करते हैं ना काम, कि अब भाई हम करेंगे करेंगे करके ओखली में सर दे ही देते हैं कि चलो कर ही देते हैं, अब क्या है। तो अच्छा, ओखली में सिर देना,
1: ओखली में सिर देना हुआ एक मुहावरा, इसी को दूसरे मुहावरे के साथ भी जोड़ते हैं ना।
2: हाँ,
1: ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डर।
2: बिल्कुल, अब आपने उसमें दाल ही दिया है ना तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा अब।
1: जी, और कुछ हल्की फुल्की बातें भी होंगी, और ये हल्की फुल्की बातें भले है लेकिन बड़े काम की है, क्योंकि अब जो समय है त्योहारों का समय आ गया भाई, आ चला। और त्योहार आने का मतलब क्या,
2: त्योहार के नाम से ही मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि त्योहार मतलब बढ़िया खुशियां, एकदम चकाचौंध हर तरफ।
1: वो जो खुशियां और चकाचौंध ये आती है थोड़ी सी साफ सफाई सजावट घर की होती है,
2: काम करना
1: तो
2: पड़ता
1: त्योहार
2: है।
1: मतलब सजावट भी है, थोड़ी साफ सफाई भी है, थोड़ा सा घर में काम भी हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाएंगे ना सबके लिए, खाने के लिए, मेहमानों के लिए भी और घर के सदस्यों के लिए भी, तो वो भी एक काम होता है। और इन चीजों के लिए भाई खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी, वरना सजावट का सामान कैसे आएगा, घर में पकवान बनाने का सामान कैसे आएगा, तो खरीदारी भी
2: एक समझिए एक हमें आनंद का विषय है। खरीदारी करने जाना होता है सच्ची में, खरीदारी करने जाना है, मतलब सोच के भी इतना अच्छा लगता है कि अब जाएंगे जो मन करेगा देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें जो देखेंगे वो हम अपने बजट के हिसाब से खरीदेंगे।
1: जो त्योहारों का समय होता है ना, इसी उत्सुकता और उत्साह की वजह से जो विक्रेता है वो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑफर्स निकाल देते हैं लोगों को और लुभाने के लिए, ताकि लोग उनकी तरफ खरीदारी के लिए और आकर्षित।
2: बहुत सारी चीजें होती हैं और तरह तरह के ऑफर तो होते हैं, साथ में कई सारे और जो इस तरीके के विक्रेता होते हैं ना, तो कुछ जो लुभावने होते हैं इसमें वो ठगी का भी वो कर लेते हैं चीजें, तो इससे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
1: ठगना भी नहीं है, अपना बजट भी नहीं बिगाड़ना है,
2: बिल्कुल
1: कार्यक्रम को संभालना है तो भाई गाने
2: गीत तो सुनना पड़ेगा
1: जी।

0: आरती बहुत खूबसूरत गीत था और इसके जो शब्द थे ना कि तन मन की सुध-बुध गवा बैठी, कोई चीज़ जब दिल में समाती है, हमारे मन में बस जाती है ना, तो वो इतनी भाती है कि हमें सुध-बुध नहीं रहती। और इसी तरह से जब हम किसी काम को बहुत डूब कर करते हैं तो उसकी सुध-बुध नहीं रहती और ऐसा काम हमें सफलता भी देता है।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही हम एक महिला को लेकर आए हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो है संगीता देवी, जो कि संस्थापक हैं दियामाटी की। तो संगीता देवी की कहानी बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार से जुड़ी हुई है। ग्रामीण महिलाओं की खेती और पशुपालन से जुड़ी रोजमर्रा की समस्याओं ने उन्हें ऐसा सामूहिक मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें महिलाएं केवल किसान या लाभार्थी बनकर न रहकर कंपनी की शेयर धारक और निर्णय लेने वाली सदस्य बने।
0: तो उन्होंने जो निर्णय लिया ना आरती, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि

0: ग्रामीण महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जोड़ना जो ज्यादा तकनीक के बारे में नहीं जानती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका जो काम है वो खेती से जुड़ी है, पशुपालन से जुड़ी है, तो उन्हीं के काम को लेकर उन्हें आगे बढ़ाना। और संगीता देवी की कहानी जो आज हम बता रहे हैं, इसकी सबसे खास बात यही है कि ये केवल एक कंपनी की स्थापना की बात नहीं है, ये उस सोच की कहानी है या उस सोच की बात है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को मदद पाने वाली महिलाओं से निर्णय लेने वाली उद्यमी महिलाओं को बदलने का प्रयास किया गया। यानी कि वो महिलाएं जो अब तक सिर्फ दूसरों से मदद मांग रही थी,
1: सही बात है,
0: वो उठकर इतनी सशक्त बनी कि वो उद्यमी बनी और दूसरों की मदद करने के काबिल भी बन सकी। और इस कंपनी की नींव गाँव की महिलाओं ने, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें होती है ना, बस वहीं से पड़ गई।
1: बिल्कुल, इससे ये भी हमें पता चलता है ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो या हम बहुत सारी पूंजी इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू करें। अगर हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास कोई हुनर है, तो हम छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब देखा गया कि किसान बीज, खाद और पशुपालन से जुड़ी हर छोटी जरूरत के लिए बाजार और बिचौलियों पर निर्भर हैं, तब लगा कि अगर महिलाएं मिलकर अपनी कंपनी बनाएं और खुद फैसले लें, तो वो सिर्फ अपनी आय ही नहीं बढ़ा पाएंगी बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकेंगी।
0: आरती और आरती देवी की यात्रा हमें बस यही तो बताती है कि गांव की जो महिलाएं हैं उसके पास संसाधन बहुत सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी सामूहिक सोच है, यानी कि सब मिलकर जब वो किसी बात पर विचार करती हैं, सोच करती हैं, उसे अंजाम देती हैं, या प्रशिक्षण उनके पास जो है, जो बाजार की जो समझ है और नेतृत्व का अवसर अगर उनको मिल जाए, तो ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली एक उद्यमी महिला भी बन सकती हैं।
1: बिल्कुल, और इस कंपनी की कहानी में असली माटी जो है, अगर कहा जाए दिया माटी माटी कहे, तो माटी जो है वो गांव की है और उसकी असली दिया है वो महिलाएं जो मिलकर अपने भविष्य को रोशन करने की कोशिश कर रही हैं। 28 जुलाई 2023 को दिया माटी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई और शुरुआत 10 ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता जो समूह होते हैं से हुई थी।
0: और हर पंचायत से 3 महिलाओं को इसके लिए प्रमोटर बनाया गया और इस तरह से करीब 30 महिलाओं ने इस कंपनी की नींव रखी। और कहें कि शुरुआत करना इस चीज के लिए बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने ना पहले कभी कोई कंपनी बनाई थी, शेयर्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये शब्द उन्होंने ना सुने थे, ना ऐसा कोई काम किया था। तो इस टीम ने गांव-गांव बैठकों का आयोजन किया और महिलाओं को ये समझाया कि वो किसी भी सरकारी योजना की लाभार्थी नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना जहाँ इन्होंने ये जब ये सब नए शब्द थे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के सिवा या गांव की खेती के सिवा कुछ नहीं देखा था, कुछ समझा नहीं था, वहाँ उनको इतना सशक्त बना देना, इतना ऊपर तक ले आना बहुत बड़ी बात है। और उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सकें। और सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं का भरोसा जीतना था। कंपनी और शेयर जैसे विषय उनके लिए बिल्कुल नए थे, तो उनको समझाया गया कि उनकी अपनी कंपनी है।
0: और आरती, जब उन्होंने देखा कि हर फैसला बहुत पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि उनसे छुपाकर कोई भी चीज नहीं की जा रही है और उनकी राय को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कंपनी की तरफ जो उनका जुड़ाव था वो भी बहुत मजबूत हुआ। और उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल खेती करना नहीं था बल्कि किसानों की सामूहिक बाजार शक्ति है उसको बढ़ाना था।
1: बिल्कुल, और कंपनी के माध्यम से महिलाओं को बीज, खाद और खेती से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी उपज को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और साथ ही बकरी पालन भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यानी कि आप समझ लीजिए, जो भी कुछ गाँव में होता है सभी चीजों को बाजार का एक प्रोडक्ट की तरह से उन्होंने प्रयोग किया। और स्थानीय महिलाओं के लिए बकरी पालन आय का प्रमुख साधन था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण होता है पशु आहार होता है और बाजार तक पहुंच, ये कुछ समस्याएं थी।
0: बिल्कुल, अगर आप किसी भी तरह का कोई पशु पालन कर रहे हैं तो अपने पशु को भी स्वस्थ रखने के लिए जो उसका आहार है उस पर खास ध्यान देना होता है। और इसी संदर्भ में उनकी कंपनी ने दमदार दाना इस नाम से एक पशु आहार विकसित किया। इसके बाद संगीता देवी के मन में विचार आया कि भाई जब कपड़े और दूसरी आवश्यक जरूरतें ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं, तो क्यों ना ये जो पशु आहार है, बकरी का आहार है, इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और इसी सोच के साथ जो उन्होंने जो दमदार दाना जो लॉन्च किया था उसको सही दिशा में पहुंचाने का काम शुरू हो गया।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए हर चीज़ आज एक क्लिक के ऊपर में मिलती है, तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज़ करना चाहें तो हम अपने घर से भी इसमें ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता और डिजिटल बाजार के बीच एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मॉडल का एक बड़ा बदलाव ये है कि महिलाएं बैंक

0: बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यवसाय संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय हुई। कुछ महिलाएं ग्राम सभा जैसे स्थानीय मंचों पर भी अपनी बात रखने लगी।
1: और कंपनी भविष्य में पशु सप्लीमेंट्स, हरा चारा, जैविक उर्वरक, कृषि इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण, इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है और दमदार दाना को बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें कहीं भी रुकना नहीं होता है, हम ये कभी ना सोचें कि हम में ये कमी है या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए
0: अभी समय हो गया एक छोटे से
1: अंतराल का।
0: हाँ।

0: तो ये गाना सुना और इस गाने को सुनने के बाद ना मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत खनक थी इस गीत में और मुझे भी बहुत पसंद है,
1: है
0: और
1: भी अच्छा।
0: अब बात करते हैं एक मुहावरे की जो है ओखली में सिर देना। यानी बहुत बार क्या होता है ना, इंसान मुसीबत में फंसता नहीं बल्कि मुसीबत को देखकर खुद ही कहता है कि आइए आपका स्वागत।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे मौकों के लिए ही हिंदी में बड़ी मजेदार कहावतें मुहावरे हैं, जैसे एक तो है भाई आ बैल मुझे मारो और एक है ओखली में सिर देना, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। यानी कि किसी भी परेशानी में जानबूझकर पड़ना और फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। और जब ओखली में सिर देंगे तो मुसल तो पड़ेंगे ना भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, पड़ोसी ने कहा भाई साहब मेरी शादी की तैयारियों में बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आपने कह दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं मैं तो करूँगा। तो और 5 मिनट बाद आप फूल सजा रहे हैं, कहीं पर आप कुर्सियां लगा रहे हैं, और आधे घंटे बाद आप मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, और शाम होते होते दूल्हे की सहराबंदी भी आपके जिम्मे। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे भैया जरा उससे डीजे वाले से कह दो कि जरा और दूसरा गाना लगा दे। तो मतलब एक से लेके पूरा 10 तक सारे काम आपके जिम्मे।
0: बिल्कुल। यानी आपने कहा था कि भाई कोई ठीक है मदद चाहिए तो हमें भी बताना, बाद में आपको लगेगा कि भाई क्यों इस ओखली में सिर दे दिया हमने। और जब धनाधन मुसल पड़ते हैं तब ये बात ध्यान में दी क्यों दिया था हमने ये सिर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो और हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में?
1: बिल्कुल, श्रोता भी हमारे बहुत कुछ कह रहे हैं। और हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना मतलब आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को न्योता देना जो खुद के साथ साथ घर परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओखली परिवार और समाज में खलबली मचा सकती है। सच बात है,
0: सही बात है। और एक अन्य संदेश में श्रोता ने कहा है कि ये लोकप्रिय हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम मोल लेना। और ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना, इसका अर्थ कि जब एक बार कठिन काम करने का निश्चय कर ही लिया है तो आने वाली जो भी बाधाएं हैं समस्याएं हैं उनसे डरना नहीं है। तो हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ में।

तो भाई मन का बावरा पंछी डोल रहा है और हमारे जो संदेश हैं वो भी आ रहे हैं। और ओखली क्या है इसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि ओखली वो भारी बर्तन है जिसमें अनाज

0: अनाज को डालकर मूसल से कूटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना सर रख दे तो चोट लगना तो तय है। इसीलिए कहावत का सीधा सीधा संदेश यही है कि कठिन परिस्थितियां जोखिम को चुना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना तो व्यर्थ है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो भी कुछ कहना चाहते हैं। वो लिखते हैं कि हिंदी मुहावरा यानी कि ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम को मोल लेना। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि आगे चलकर भारी परेशानी नुकसान या संकट आने वाला है स्वयं अपनी मर्जी से किसी कठिन काम को हाथ में लेता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।
0: और भी संदेश हैं इसके लिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ओखली में सिर देना ये वाक्य जीवन के साहस और दृढ़ता को भी दिखाता है। यदि अपनी स्वेच्छा से कोई चुनौतीपूर्ण रास्ता चुन लिया जाए, जैसे कोई भी कठिन परीक्षा है, नया व्यवसाय है, तो अब उसके संघर्षों से डरने का कोई फायदा नहीं बल्कि डट कर उनका सामना करना है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना तो मूसल से क्या डरना बड़ा रोचक है। अगर गाना चला दें तो विविध भारती को ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मतलब डर। इनका कहना है कि नए गाने आए चाहे पुराने गाने आपको सुनना है ऐसा भी नहीं है।
0: एक हमारे श्रोता है जिन्होंने अपना संदेश साझा किया है, ये बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम घर की जो महिलाएं हैं चाहे वो पत्नियां हैं बहनें उनको करना पड़ता है। हमारे पापा का पोस्टमार्टम तो भीलवाड़ा में करवाया गया और इन्होंने अपनी कुछ घटना लिखी है कि पुलिस वालों के साथ में कुछ इस तरह की बातचीत इनकी हुई तो फिर मुनीम को के जरिए वो काम करवाया गया, तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि इस तरह का कार्य जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज मैं दांतों के डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर कुछ ने जब चेक किया तो उसने कहा कि कुछ जो दांत हैं वो ख़राब हो गए हैं तो इन्हें नया लगवा लीजिए उसको निकलवा के। तो मैंने कहा लगा दीजिए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया पर मैंने यही सोच लिया कि अब ओखली में सिर दिया ही है तो डरना कैसा, यानी कि अब दांत निकलेगा तो दर्द तो होना ही होना है, उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा।
0: यानी कि सिर्फ दिखाने गए थे और दांत का ट्रीटमेंट चालू हो गया। चलिए अब हम भी एक गाना सुन लेते हैं।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: बिल्कुल
0: और बातों के साथ और
1: संदेशों के साथ में और ओखली हमारी चल रही है। तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। अच्छा। तो मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से पछतावा कैसा। फिर हम दोनों हंस देते हैं और अगर उस समय बच्चे बैठे हों तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई फिर से डरना क्यों है, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ में उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है भैया, आरती, मिठाई,
1: मिठाई आती है, तरह तरह के पकवान,
0: रिश्तेदार। नहीं, सबसे पहले शुरू होता है भाई चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने भी।
0: और पता है घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहारों में पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार तो होता है कि साल भर जो सामान अलमारियों में पड़े रहते हैं उनकी हमें याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई ये काम की चीज़ नहीं तो इसे निकाल दिया जाए या काम का है तो रख लें। कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज़, भाई नहीं रख दो काम की चीज़ है।
1: बिल्कुल। और वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी इसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारतीय फैमिलीज होती हैं उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज़ हम उसको खराब नहीं करते। अगर कोई डिब्बा है तो उसको खाली चलो उसको धो के रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी, चावल निकलेंगे।
0: के साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात कोई ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पे मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या जंग लग के खराब हो गए, लेकिन उस चीज से जो जुड़ाव उसकी वजह से भी हम
1: उस चीज से क्या उसकी यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते हमें कोई पुराना फोटो मिल जाए बस
0: एल्बम
1: फिर क्या हो गया काम, फिर तो सफाई बंद, यादें शुरू। अरे ये फोटो देखो वो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था या कितनी पतली थी, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो, नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला।
0: और इतने सारे ऑफर भी उन पर डाल दिए जाते हैं, और घर से जब हम निकलते ना खरीदारी के लिए तो एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है या फला फला चीज लेनी है, लेकिन जब बाजार पहुंचते हैं तो बस वो जो कहते हैं कि लुभावने अवसर जो होते हैं, जो ऑफर होते हैं उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं, जूते भी लेने, सजावट की चीजें भी ले लो, तो कुछ मिठाई भी ले लो, भाई जो मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो। और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है, तो कई बार क्या करता है मैं
1: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो
0: ताकि बहुत सारी चीजें और खरीद ले।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सजी जो दुकानें होती हैं, जो सामान होता है, तो सजावट भरा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है तो मन ही नहीं करता वहां से हटें, अच्छा ये भी ले लेते हैं वो भी ले

0: लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में, लेकिन उसे उठा लाते हैं।
1: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए, कोई एक कहते हैं कि लाइट लगानी है हमें, तो एक लेनी होती है साथ में दो और लेते, नहीं ये वाला झूमर भी ले लें, ये वाली कंदील भी ले लें, ये वाली लड़ भी ले लें। इस तरह से वो सामान बढ़ता चला जाता है और बजट पर भारी हो जाता है।
0: बिल्कुल। और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े लेते हैं ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का साथ ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य कहता है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं, है ना?
1: बस वो इंटरनेट पर देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि नए नए डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहां सजावट देखी है बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लगना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: ऐसा लगता है। और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने सिर्फ कहते ना दिखाने के लिए काम करता है। कुशन को उठाया यहाँ से वहां रख दिया, ये उठाई चीज वहां से वहां रख दी, जो काम जिसे ना करना वो काम के बहाने भी इस तरह से।
0: बिल्कुल छोटी छोटी चीजें उठा के, अच्छा ये चीज वहां है वहां रख दी, काम कर रहे दिख रहा क्या, देखो हम काम कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा, क्योंकि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा।
1: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: सच में जो बहारों की जो रुत आ रही है यानी कि त्योहारों की रुत आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहाँ सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्यौहार आ रहे हों और घर में साफ सफाई ना हो ये असंभव है, और पतिदेव के पॉकेट की भी सफाई ना हो ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की

0: खरीदी वैरायटी से भी भरी बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है। इसके सामने पतिदेव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
1: और अब सबसे पहले जो त्योहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएं पुरुष बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं, तो जो साज सज्जा होती है उसमें कपड़ों के गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है। बाजारों में बहुत धूम मची हुई
0: है। बिल्कुल, इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मज़ेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वहीं विंडो शॉपिंग और तोल मोल करना, ये सब अपना ही एक अलग मज़ा होता है इन चीज़ों का।
0: बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ सफाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है। सफाई भी बहुत काफ़ी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहता हूँ, फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
1: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है। ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्यौहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी बेकार है। इसीलिए असली मज़ा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहाँ एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि त्यौहार बनाम खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बड़ा बेमिसाल मुद्दा है। त्यौहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियाँ, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती हैं। अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती हैं। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता, लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई करती हैं और जाले भी साफ करती हैं, फिर माँ सब्जी बना देती हैं और उसके बाद बहन रोटियाँ देती हैं। सफाई तो नजाकत से बयान करती ही हैं। मतलब चीज़ें हैं कि देखिए, साफ सफाई घर में होनी चाहिए, बहुत सारी जो ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो जाती
1: और
0: है।
1: और इसका पूरा सीधे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका भी यही है, क्योंकि सीलन की बदबू हो चुकी होती है घरों में, और सीलन से कई बार खराब हो चुकी होती है बारिश के बाद में। फिर जब ये त्यौहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं मकड़ियों के, उसकी साफ सफाई हो जाती है, और पूरा घर कई बार जब हम लिपाई भी करवाते हैं तो जो कोनों में कीड़े मकोड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और पुरानी चीजें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकाल कर घर में जगह बना दी जाती है। और आरती त्योहारों का असली मजा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसियों के घर भी कई बार हम मिठाइयां पहुंचाते हैं उनसे ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और सबके साथ मिलकर ये खुशियां बांटना ये बात ही अलग होती है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्यौहार बनाम खरीदारी, सजावट, सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है। मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जो जितने भी कबर्ड हैं, अलमारी हैं, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है, क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीज़ें मुझे मिलती नहीं हैं और श्रीमती जी को इससे बाहर रखना पड़ता है और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीज़ों में मेरी जो चीज़ें वो मैं ही रखता हूँ, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है, मतलब त्यौहार में ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना कि जब त्यौहार में सफाई होती है ना तो मेरे सामान कहाँ चले गए, वो मिल नहीं रहे। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है ना, बहुत खतरनाक होती है कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहाँ रख दिया। तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने घर, अपने कमरे की सफाई, अपने सामान की सफाई खुद करें, ताकि हमें अपने जो हमें मालूम होगा कि हमने कहाँ रखा है वो सामान।
1: तो हम बात कर रहे हैं कि अपने घर की, अपनी चीजों की सफाई कैसे रखनी, इसके साथ छोटा सा एक काम हम ये भी कर लें कि मन को भी साफ करें। हम कई बार अपने मन में लोगों के प्रति जो भावनाएं रखते हैं उनको भी साफ कर सकते हैं, और घर को साफ करने के लिए भी नई चीज़ें खरीदी, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं जो कई बार तकरार हो जाती है और मन में हम मुटाव लेकर बैठ जाते हैं और बुरी भावनाएं लेकर बैठ जाते हैं, उनकी भी सफाई करिए, और बिल्कुल सारी गिले शिकवे भुला कर त्यौहारों में उनसे भी गले मिलिए।
0: बिल्कुल। एक हमारे जो साथी हैं वो इसी बात को कहते हैं जो आपने कहा है कि सफाई, सजावट और ख़रीदारी त्यौहारों की केवल बाहरी तैयारियाँ हैं, इनका असली उद्देश्य हमारे भीतर खुशी, संतोष और प्रेम का संचार करना है। जब घर का हर कोना साफ और जगमगाता है, तब मन में भी खुशियां उसकी एक नई रोशनी जल उठती है।
1: बिल्कुल, घर भी सजाइए लेकिन रिश्तों में भी थोड़ी सी रोशनी लगाइए।

0: क्योंकि त्यौहार की असली रौनक बाजारों में नहीं या सजावट की दुकान में नहीं मिलती, वो तो अपनों के साथ मिलकर बैठती है, जब उनके साथ मिल बैठकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए हम भी एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारा प्रोग्राम भी अब आगे चल रहा है और हम बता दें कि आज बहुत एक ख़ास दिन है जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस। और आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ भ्रांतियाँ हैं उनको भी दूर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील विषय है और समाज को प्रेरित भी करती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो इस तरह के मरीज़ होते हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं, उनको ख़ास तौर पर हमारे प्रेम की बहुत ज़रूरत होती है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी सेरेब्रल पॉलिसी है ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित कर सकती है। यह मस्तिष्क के विकास से जुड़ी क्षति या असामान्य विकास के कारण होती है
0: और ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें मांसपेशियों का तनाव और अकड़न बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक और इसका प्रकार है जिसमें हाथ पैरों और हथेलियों के कुछ मामलों और चेहरों और जीभ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जो मरीज हैं उनके लिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही ये एक तरीके की ऐसी भी होती है जिसमें कि मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे चलने में अस्थिरता आ सकती है और सटीक जो नियंत्रण होती है उसकी आवश्यकता वाले कामों में कठिनाई हो सकती है।
0: बिल्कुल। किसी को चलने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है आरती, तो किसी को बोलने या फिर रोज़मर्रा के जो काम हैं उनमें किसी भी तरह का सहयोग लेना पड़ता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएँ होती हैं।

0: हाँ तो हम ले रहे थे अपने किस तरह से, श्रोता बता रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई करते हैं, सजावट करते हैं त्योहार की।
1: संदेश आने बंदी नहीं हो रहे हैं।
0: हाँ तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इन सब तामझाम के बीच में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब काम खत्म करके पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठता है और चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी यादें ताजा करी जाती हैं, रिश्तेदारों की खिंचाई की जाती है और हंसना हंसाना ही त्योहार को सच में त्योहार बनाता है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि गणपति पर हमारे यहाँ बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे किसी ने भेजे थे और इन चॉकलेट के डब्बों में हमने मक्खन रख लिया। तो आपने सही कहा कि काम करते करते कई बार एक एल्बम भी मिल गई तो सफाई धरी की धरी रह जाती है, यानी कि हमारी जो बातें हैं उनसे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे जो श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ और गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें और बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है, फिर भी विंडो शॉपिंग और तोल मोल करने का अपना ही अलग मजा है।
1: तो चलिए अब एक गाने सुनने का भी अलग मजा होता है, सुन लेते हैं गाना।

0: तो भाई इस गीत के साथ में घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम भी सायोनारा कहने का,
1: हम भी सायोनारा कहते हैं,
0: कल फिर आएंगे सखी सहेली लेकर, ये वादा करते हैं,
1: लेकिन कोई और और इसी के साथ में हमें अनुमति दीजिए यानी कि आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से, बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ, आज वहाँ पर बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई हैं जिनको मैं अक्सर प्रोग्रामिंग हेट के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज़ सुनता था। मेरे सारे अभी मतलब मैं थोड़ा सा खोया हूँ क्योंकि एक साथ कई सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं और मुझे पता नहीं मैं कौन सा शेयर करूँ, कैसे बात करूँ।
1: नहीं, आप दिल खोल के हर एक याद शेयर कीजिए, हम उसी के लिए है ताकि हमारे सुनने वालों तक आपके दिल की बातें पहुंचे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और आपके पसंदीदा गीत हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, वो भी आपको शेयर करने। और रेडियो में जैसे हम आए, विविध भारती से जुड़ी बहुत सारी यादें आपने शेयर की है हमारे साथ,
2: बिल्कुल।
1: तो विविध भारती किस तरह से आपकी ज़िंदगी से जुड़ा और उसकी कुछ यादें वो हमें ज़रूर बताएं, वहाँ से शुरुआत करते हैं।
2: बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने वाला हूँ और बचपन मेरे बड़े खूबसूरत रहे हैं, सबके होते हैं बहुत खूबसूरत, बस उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो से मैं कैसे जुड़ा, हम इसकी बात करते हैं पहले। तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम लोग अगर कभी टीवी देखना भी होता था तो भाड़े पे बैटरी लेकर के आते थे।
1: अच्छा।
2: हाँ जी, तो 12 रुपये या 15 रुपये में भाड़े पे मिलता था 2-3 दिनों के लिए, तो उसमें हम सैटरडे, फ्राइडे और संडे को फिल्में आती थी। फ्राइडे को आई थिंक रात के 9:30 बजे से, फ्राइडे को, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से और संडे को शाम 4:30 बजे से आता था।
1: हाँ, 4 या 5 बजे।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यही हमारा एक फिल्म देखने का साधन हुआ करता था। लेकिन पिताजी ने एक रेडियो 2 सेल का लेके आया था, उन्होंने, बच्चे ही थे और बाकी मेरे गांव के लोग जब रेडियो सुनते थे तो मुझे भी लगता था मुझे भी रेडियो चाहिए। और मैंने जब रेडियो लगाया और मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम एक दिन विविध भारती आया, मुझे एग्जैक्ट वो एज तो नहीं पता, बट उस दिन से मुझे लत लग गई। और कमाल की बात ये बताऊं मैम आपको कि मेरे पिताजी अभी रिटायर हुए हैं, 1 महीना पहले मैंने पापा को एक रेडियो गिफ्ट किया है।
1: अच्छा।
2: हाँ जी,
1: क्या बात है।
2: क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर वो रेडियो नहीं दिए होते तो आज मैं अभिनेता नहीं होता, क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही मुझे अभिनेता बनना है ये ख्याल आया। और उसकी तैयारी कैसे की जाए, मुंबई कैसे जाया जाए, कहाँ से थिएटर की जाए, वो सब मुझे विविध भारती में जो आप लोग इंटरव्यू लेते थे, है ना, आज के फनकार हुए, चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में, तो वो सब सुन सुन के या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे
1: जी जी।
2: तो वो सब सुन सुन के मैं अपने आप को तैयार किया और पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा।
1: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से विविध भारती मेरे ज़िंदगी में आया। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, मैं कई बार लोगों से शेयर किया हूँ कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है या फिर मैं जो चंदन हूँ, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आसपास का संस्कार अगर मेरे अंदर है तो 50% विविध भारती का भी है। विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए, है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना। क्योंकि एक बाल्य मन में जिसको कुछ भी, वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से वो पूरी दुनिया को देख रहा है, तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना चाहता हूँ।
1: ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज़्यादा उन पर असर, उनकी जिंदगियों पर असर करती है विविध भारती। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
2: शुक्रिया।
1: बचपन की जैसे बात की आपने, तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए, क्या वो इस चीज से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी चीज, बचपन को जिया है शायद आपने, जैसे सही मानों में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप बचपन?
2: बिल्कुल, अरे वाह। एक तो जहाँ पे मतलब, क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, रात्रि सेवा भी सुनता था, अगर मेरी आंखें खुल गई हों 2:30-3 बजे तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था और गाने चल रहे होते थे। मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी, तो जहाँ मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहाँ अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा। करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे।
1: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे?
2: नहीं, कभी भी नहीं, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा।
1: अच्छा,
2: है ना। बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से। अब हो सकता है ये फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वाले को ऐसा ही देखा है तो। बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा।
1: अच्छा।
2: तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा फिल्म में भर्ती होगा। तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल, और पहली बार लगा कि अरे यार ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊँ मैं। बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब विविध भारती ने हौसला दिया कि देख सपना है अगर तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
1: और सपनों की नगरी में आना ही है।
2: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे
1: जी,
2: तुम्हारा है तुम लड़ो।
1: बचपन में कैसे थे, नटखट थे?
2: अरे बहुत।
1: किस तरह के आपने बचपन को जिया है जैसे?
2: जी,
1: किस तरह से जिया है, वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे भाई बहनों के बीच?
2: बिल्कुल,
1: आप ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
2: हाँ मतलब शरारती तो था ही। कमाल की बात यह है कि जहाँ मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है।
1: अच्छा।
2: नदी से इसीलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ, और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहाँ पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहाँ पे 3-3 पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन।
1: अच्छा।
2: और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा गाँव, 3 पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो और सब कुछ लिखा हुआ होता है।
1: बिल्कुल।
2: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपने आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाए, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में अमूमन सभी घर में सभी माँ बाप चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी पर हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए। और मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी 5 भाई थे और उनमें से 3 भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में हैं, कोई BSF में हैं, वहाँ एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं।
1: अच्छा।
2: बट मैं सोचा कि नहीं मुझे तो जाना है मुंबई। तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था। कई बार मुझे ये लगता है थोड़ा सा फिलॉसफी वाली बातें हो जाएंगी, बट ये जो हैप्पीनेस है मेरे लिए ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, और ये सॉफ्टवेयर बचपन से इंस्टॉल होकर के आया है मेरे पास।
1: बिल्कुल।
2: मैं बेवजह खुश हो जाता हूँ कई बार।
1: वो खुशी कहीं ना कहीं अंदर ही है।
2: हाँ।
1: जिसे हम बाहर तलाशते हैं।
2: जी, और यही वजह है कि मुंबई भी मुझे लगा कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मैं तो जाऊंगा और मुझे काम मिलेगा।
1: बिल्कुल।
2: यही एटीट्यूड था मुझे, कभी भी शक नहीं हुआ कि अरे भाई ये लड़का से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे,
1: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
2: हाँ।
1: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
2: एक बहुत प्यारा गीत है, गाने का बोल है जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है बेटा, फिल्म का ये गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।
2: यस।

0: बात चली है चंदन रॉय से, तो
1: अच्छा
0: बचपन की बातें तो बहुत सी आपने की है, अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी, देखिए पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से। मैं भूल जाता था चीज़ें, जैसे तारे जमी पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
0: अच्छा
1: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूँ, कभी दीर्घी लिख दूँ किसी हिंदी में भी, तो था ये, मैं चीज़ें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार। तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं ये आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस ले आओ।
0: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: उस
1: जी
0: तरफ रुझान शुरू से था।
1: हाँ, और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल हैं, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, वो मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके करके आ रहे हो, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया।
0: अच्छा
1: अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ,
0: अरे
1: बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
0: ये आपने पटना से किया
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी?
1: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूँगा और थोड़ा जागरूक भी रहूँगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है
0: बिल्कुल
1: ये सब मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा उसके लिए।
0: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
1: हाँ
0: आ गया
1: जी
0: था,
1: हाँ जी हाँ
0: इसीलिए
1: जी हाँ
0: वो
1: जी,
0: फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये अब महसूस करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
0: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं,
1: देखो,
0: सुनाएंगे?
1: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूँगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूँगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लारा दत्ता की फिल्म थी।
0: जी।
1: और

0: अच्छा, हम आते हैं इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम बदल दिया
1: हाँ जी,
0: है ना? वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहाँ से
1: ये
0: आया?
1: सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है,
0: जी
1: क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे हम बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया, और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो वो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन, तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूँ, मैं
0: बिल्कुल
1: भूल ना जाऊँ। मेरे यहाँ ना वही, जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय, और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना।
0: बहुत कमाल।
1: तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख चुका हूँ। बोले नहीं, फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था, और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ
0: जी
1: रही है कि भाई 1 2 3 चौथा बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया, उसमें वो एक बांधा गया चूंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं
0: अच्छा
1: मिले तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था, और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं, और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई, और तब तक 12 12:30 हो चुके थे, और मेरे, जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको। मेरे सारे दोस्तों भाग गए, और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने, मुझे बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आए। मुझे लगे यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया, हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई। बट उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, 1 2 महीने के बाद फिर से क्योंकि पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता था,
0: जी,
1: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्मों की।
0: रच बस गया था सिनेमा।
1: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है। ये कहानियाँ आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यही सब शरारतें मुझे याद आती हैं
0: जी
1: आज,
0: जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का।
1: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था, तो मुझे ये था कि यार जब मैं मुंबई जाऊंगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे। तो मैंने ना 1 से 12 15 सवाल तैयार करके रखा था, यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे, और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
0: वो मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं।
1: यस, और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है, मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूँ मैं। ये बहुत मुश्किल है, जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
0: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
1: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा
0: ये
1: चादर।
0: उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे
1: बिल्कुल
0: नहीं सपने देखने से,
1: हाँ,
0: और जो चाहेंगे वो होगा,
1: हो जाएगा।
0: बस वो मेहनत की ज़रूरत है
1: एक ही
0: और
1: जिंदगी मिली है
0: शिद्दत।
1: ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली।

0: लिए अपने हिसाब से जिएंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता असफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव
1: जी,
0: है ना,
1: मन की
0: और
1: खुशी।
0: मन की खुशी है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार लोग लगते हैं कि अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा।
1: जी
0: नहीं, वहाँ भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीचिका जो होता है ना, वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है। होता कुछ नहीं है वहाँ, लोगों
1: बिल्कुल
0: को लगता है अरे सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूँ माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या बताऊँ आपको। मैं इसके लिए मुंबई में हूँ, ना कि
1: बिल्कुल
0: मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला गाड़ी घोड़ा। अरे नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूँ, एक कमाल की एनर्जी में होता हूँ। ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा
0: ओ
1: है,
0: हो,
1: कहीं आपने कही है ये बात, एक्शन और कट
0: बिल्कुल
1: के बीच का
0: बिल्कुल
1: लम्हा।
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस। और जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो वो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस
1: जी,
0: बिंदु पे रहते हो। अब इन्हें भी
1: मेडिटेशन,
0: बिल्कुल,
1: ध्यान।
0: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूँ और समझता हूँ कि उस लम्हे को जी लूँ, उस पल को जी लूँ। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश होती है। उसके आसपास भी चला जाऊँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी ज़िंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहाँ पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा।
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है, ये दिल आशिकाना,

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुँचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुँचे थे। तो वहाँ थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी कॉलेज में।
1: चूंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना लोड लेने की चीज़ नहीं है, इसको खेलना है। नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको इंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक, कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो। मैं उसमें बाल्य कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मज़ा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे, गांधी गांधी मैदान में।
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी,
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता है यार ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे,

0: लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे, करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूं कि क्राफ्ट सीख लूं, तरीका सीख लूं, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था, हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोलें कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लग रहा था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली कैरेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें, है
1: जी
0: ना, कैरेक्टर को कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज ख़त्म करने के बाद पटना में मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहाँ पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए, साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले किया। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार चूँकि मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था,
1: बिल्कुल
0: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो सब नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो, कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊँगा, है ना, और इसलिए मुझे एक महीने की छुट्टी अब तो नहीं आ पाऊँगा। और
1: अच्छा
0: मैं उस एक महीने में राग दरबारी, एक प्ले था श्री लाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय।
1: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: बिल्कुल।
1: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े, और उसके
0: जी
1: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
0: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप चार भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
1: बिल्कुल
0: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगूं। तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में, IIMC में जाने का एक ही था उद्देश्य कि वहाँ जॉब मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहाँ पर मुझे 11,800 रुपया मुझे मिलता था, और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मेरे पूरे पैसे नहीं आते थे, है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी
1: बिल्कुल डेट याद है
0: हाँ जी,
1: एकदम।
0: उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
1: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में, उसकी
0: हाँ
1: याद, वो जो पहला दिन था,
0: हाँ
1: उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूँ, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते हैं आप, मुंबई के पहले दिन को।
0: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कुछ भी आइडिया नहीं था। आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ लगता है क्या हिम्मत था उस लड़के में। आज का चंदन तो नहीं आता, है ना,
1: जी
0: 50 चीज़ें सोचता। उस समय कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीज़ों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन वहाँ उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूँ तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ।
1: अच्छा
0: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए हैं, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया
1: अच्छा
0: ताकि कोई देख न ले कि ये क्या कर रहा।
1: अच्छा
0: फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ।

0: जो होगा आपके हवाले है। आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस
1: बिल्कुल
0: जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज़ सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
1: जी
0: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो एक दो दिन, 3 दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
1: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
0: हाँ जी,
1: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मज़ेदार था आपके लिए
0: मज़ेदार तो
1: ये
0: बिल्कुल
1: जीवन,
0: था, बिल्कुल था।
1: है
0: वो
1: ना? उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं
0: कभी
1: लेते?
0: भी नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी ज़िंदगी में
1: जी
0: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, या मुंबई में हूँ, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूँ,
1: जी
0: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता।
1: जी
0: तो वो दिन बहुत ज़रूरी थे, वो
1: बिल्कुल
0: अनुभव बहुत ज़रूरी था। तभी तो आज जब चीज़ें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उड़ता नहीं हूँ, उछलता नहीं हूँ। क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था
1: अच्छा
0: क्योंकि वहाँ भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए,
1: जी
0: है ना। और जाता क्या था, एक दो दिन रुक ही जाता था मैं वहाँ
1: ओके
0: कि 2-3 दिन में जितना भरपेट खा लूँ ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊँ तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए, पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था,
1: जी
0: वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहाँ से 7 बंगला होते हुए, 4 बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहाँ से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यशराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था। और
1: अच्छा
0: सब पैदल, क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे हो मेरे लिए हो जाते थे। तो
1: बिल्कुल
0: मैं पैदल ही निकलता, कहीं पसीने से तरबतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था। और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात ये है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे, पुराने थे। अच्छा, मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, चूंकि ये चीज़ें मैंने देखा है, भोगा है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं, इसलिए ये सब चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे। तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था, उसमें
1: अच्छा
0: तो मैंने दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है। मैं रोज़ 12 से 15-20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए, तो और ऐसा दो कि वो ऑलरेडी गंदा ही दिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया, उसमें
1: अच्छा
0: सोल वगैरह कुछ नहीं था। तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं।
1: अच्छा
0: तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है, रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई तेरे जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के 2-3 जूते मुझे दिए जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो।
1: अच्छा
0: तो उन्होंने मुझे 2 जूते दिए थे, तो वही 2 जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया। फिर 1-1.5 साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
1: आशीर्वाद है
0: आशीर्वाद है। अगर वो
1: बिल्कुल।
0: लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
1: चलिए यहाँ सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: ओके,
1: कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
0: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना तो एक गाने का बहुत ज़्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना मैं
1: बिल्कुल
0: सारे बचपन के सारे गाने लेकर
1: बिल्कुल
0: के
1: सुनवाते हैं
0: हाँ
1: गीत।
0: जी

बातचीत आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: वादा,
4: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
5: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
6: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजीद वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में नारी विश्लेषण 2026 पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए नारी विश्लेषण विज्ञान भारत की समृद्ध चिकित्सीय ज्ञान परंपरा है, ये विज्ञान के साथ भारतीय ज्ञान की गौरवशाली विरासत भी है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों और औद्योगिक संभावनाओं को देश के प्रमुख उद्योग समूहों तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है।

0: है और प्रदेश में बारिश का दौर फिर शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, मऊगन, सीधी, सिंगरौली और शहडोल में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

कभी कभी हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, तो अपने बारे में अच्छा सोचिए, बहुत मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में और चर्चा करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर बनना कितना ज़रूरी है। जब हम स्वयं आत्मनिर्भर होते हैं तो हम किसी पर आश्रित नहीं होते, हमें हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। ऐसे ही अगर हमारा देश और उसके लोग खुद आत्मनिर्भर होंगे तो उन्हें किसी और देश पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, निर्भर नहीं रहना होगा। हम खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट होंगे कि हम किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे देश के लोग इतने टैलेंटेड और ज्ञानी हैं कि ऐसे कई आविष्कार वो खुद कर सकते हैं जिससे उन्हें किसी और की मदद की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही एक सोच के साथ 2020 में शुरू किया गया एक अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अभी आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में जॉली LLB 2 से।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में अभी आपने गीत सुना जॉली एलएलबी से, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, जहां आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य है हमारे देश के लोगों की क्षमताओं पर भरोसा करते हुए देश को हर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। वोकल फॉर लोकल, ये शब्द हमने कई बार सुना है। वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत का एक मुख्य संदेश है। एंड लोकल फॉर ग्लोबल, इसका अर्थ है कि हमें न केवल स्थानीय उत्पादों यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है, उन्हें खरीदना है, उनका उपयोग करना है, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर भी प्रसिद्ध बनाना है। जब हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो हमारे देश के छोटे उद्योग, हस्तशिल्प और स्थानीय कारीगर सशक्त होंगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ खुद को दुनिया से अलग यानी कि आइसोलेट नहीं करना है, बल्कि दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक मुख्य धारा से जोड़ना है। आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जो भी लोग अपने हाथों से कुछ भी बनाते हैं उसका ही वितरण किया जाता है, ताकि लोग उसके प्रति जागरूक हों, उसे खरीदें। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत की एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, स्वदेशी उत्पादों का चयन करके और इनोवेशन को अपनाकर इस अभियान को सफल बना सकती है। जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो न केवल देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि संपूर्ण विश्व के विकास में भी योगदान देगा। इसीलिए हम सभी को इस अभियान में सहयोग देना चाहिए और हम सभी इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ और अंतरा मिश्रा की आवाज़ में, दिलवाले से।

दूसरे सुंदर संगीत अभी आपने सुना दिलवाले से, सर्ज थे अरिजीत सिंह और अंता मित्रा के, संगीतकार प्रीतम और गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सान्याचार्य। दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भर अभियान के बारे में और कैसे आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, और चलिए अब चर्चा करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। दोस्तों कई बार हम अपने काम को लेकर काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं, ना ही बाहर जाते हैं और ना ही अपने परिवार से दोस्तों से मिलते हैं। यही कारण है कि आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। जीवन में काम ज़रूरी है और उसी के साथ जीवन कार्य संतुलन यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस भी। अगर इसको समझें तो व्यक्ति के काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक स्वस्थ और सकारात्मक संतुलन बनाए रखना है, उसे वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि जीवन कार्य संतुलन कहा जाता है। आज के टाइम जहां लोग दिन रात काम कर रहे हैं, इस संतुलन को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यंत आवश्यक हो गया है। आप कैसे ये कर सकते हैं, कैसे अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, अपने दिन की योजना बनाएं, काम के घंटों में केवल काम पर ध्यान दें और घर लौटने के बाद प्रेशर और चिंताओं से दूर रहें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डिजिटल डिटॉक्स। कार्यस्थल से निकलने के बाद और वीकेंड्स पर काम से जुड़ी तकनीकों और सूचनाओं से दूरी बनाए रखें। और अब आता है ना कहना सीखें, अपनी क्षमता से अधिक काम का बोझ ना लें। यदि कार्यभार बहुत अधिक है तो विनम्रता से सीमाएँ तय करना सीखें और स्वस्थ और रुचियों को प्राथमिकता दें। नियमित व्यायाम करें, योग करें, ध्यान करें और अपनी हॉबीज़ के लिए समय अवश्य निकालें। हम सभी जानते हैं कि काम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन काम ही पूरा जीवन नहीं है। अगर आप अपना जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, असली सफलता केवल एक सफल करियर में नहीं बल्कि एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में है। व्यक्ति, परिवार और कंपनियों सभी को मिलकर ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां काम के साथ साथ जीवन के हर पहलू को सम्मान और स्थान मिल सके। अपने जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस जरूर अपनाएं और जीवन और काम के बीच में अपना ध्यान रखें। अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत नीति मोहन की आवाज में, फिल्म जब तक है जान से।

नीति मोहन की आवाज़ में भी आपने गीत सुना जब तक है जान से। संगीतकार हैं एआर रहमान और गीतकार गुलजार। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। एसएससी सीएचएल ने लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के लिए 2536 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन देने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप ssc.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये एसएससी सीएचएल ने लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये पद आवेदन आमंत्रित किए हैं। अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर से सोनू निगम की आवाज में।

दोस्तों वीर से भी आपने गीत सुना, सोनू निगम की आवाज में, संगीतकार साजिद वाजिद और गीतकार गुलजार। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का गीत अभी आपने सुना। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मैं आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में सुदर्शन फ़ाकीर का ये कलाम।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: इस अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है कार्यक्रम संकेत सरिता में, और आइए श्रोताओं अब सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में अनदलीब सदानी का ये कलाम।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अंदलिब सदानी का कलाम। और आइए श्रोताओं, हम अब सुनते हैं शेख आदम आबू वाला का ये कलाम पंकज उदास की आवाज़ में।

0: राज इलाहाबादी का ये कलाम अभी आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज में।
1: चांदनी मुस्कुराने लगी, अब देखिए माहौल बदला, उनके जाने से क्या हुआ।

0: चांदनी मुस्कुराने लगी है।
1: उसी से जुड़े हर पहलू पर एक सटीक व्यावहारिक और विचारणीय विश्लेषण।

0: इस गजल के साथ संगीत सरिता का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री को

0: सिस्टम की जरूरत है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज MT ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले फौरन रोकने की भी अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
1: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा और शांतनु मोइत्रा का संगीतबद्ध किया गाना फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गाना। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में हजरत जयपुरी का लिखा और रविंद्र जैन का संगीतबद्ध किया गाना फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में शराबी फिल्म का गाना।

अगला गाना हमने लिया है फना फिल्म से, आवाज़ें हैं शान और कैलाश खेर की, प्रसून जोशी हैं गीतकार और संगीतकार हैं जतिन ललित।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जोधा अकबर फिल्म से जावेद अली ने गाए से जावेद अख्तर के हैं बोल और ए आर रहमान की है तर्ज।

0: इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार।
1: तराने नए पुराने।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत। सदाबहार गीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में मजरू का लिखा ये नगमा। फिल्म का नाम है तलाश।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: इस अंतराल के बाद आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म गोरा और काला का ये नकमा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गोरा और काला का ये नगमा। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा ये गीत। फिल्म का नाम है सीमा।

अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में 1955 में बनी फिल्म सीमा का ये नगमा। इस गीत के साथ ही सदाबहार गीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब समय हुआ है कार्यक्रम लोक रंग का। लोक रंग के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक की आवाज में ये देवी लोक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशराज पटेरिया की आवाज़ में ये भक्ति रचना। इस कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत सुनने से पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मुन्नालाल बरसैया की आवाज में ये देवी लोक गीत।

मुन्ना लाल बरसाइयाँ के गाए इस देवी लोक गीत के साथ ही लोकरंग का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। शाम के 7 बजा चाहते हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर टीम को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है, जिसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एम्प्टियन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हुरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। भारत ने कल काला सागर में वाणिज्यिक मालवाहक जहाज एमवी रोयार्ड मामा 2 पर हुए हमले की भी निंदा की है। चालक दल के सदस्यों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की।
2: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव 16 अक्टूबर को होगा। बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस होलजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। नमन धीर मैच में डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। आयु श्रोतम, अब सुनते हैं हमारे केंद्र से इस सभा और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

रात्रि 8 बजे सुनिएगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम, संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 8:20 पर। रात्रि 9 बजे सुनिएगा मन चाहे गीत कार्यक्रम। रात्रि 9:30 से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये तो थे इस सभा के कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, हम आपको कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में बता दें। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे सुबह 6:25 पर। 6:30 का समय होगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ का। गायक स्वर होगा रविंद्र साठे का। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 6:40 पर। सुबह 7 बजे सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। कृषि संकेत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रोज की ही तरह सुबह 7:05 पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:20 पर। 7:45 पर सुनिएगा संगीत सरिता कार्यक्रम। 8:15 का समय होगा लोक संगीत कार्यक्रम। चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। सुबह 9 बजे से हम

आपको सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। सुबह 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। फोन करें, गीत सुने, कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनिएगा सुबह 10:05 पर। सुबह 11 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5:30 का समय होगा संगीत सरिता कार्यक्रम का। सदबहार गीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल शाम 6:30 पर। कल शाम 6:45 पर सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम, और कार्यक्रम संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। रात्रि 8 बजे सुनिएगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम संगीत सरिता कार्यक्रम रात्रि 8:20 पर। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या से हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ग्रोथ फंड को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में सीएम यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री कल मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों से प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे और इंदिरा एकादशी पर ब्यावरा के खाटू श्याम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करना ये ग्रोथ फंड का मेजर ऑब्जेक्ट। प्रोफेशनली मैनेज होगा, जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल हो जिन एमएसएमईज में, उन एमएसएमईज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस इंडस्ट्री बॉडीज प्लस बैंक्स, इन सब का इनपुट लेके एमएसएमई ग्रोथ फंड को संचालित किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव 2026 में युवाओं से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत मध्य प्रदेश सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज पोर्टल पर पंजीयन का शुभारंभ किया और उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विकास पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अगले वर्ष एमपीपीएससी की परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी।
2: आने वाले साल युवाओं के लिए, अभी पीएससी 1 बार होती है साल में, लेकिन अगले साल युवा वर्ष हम मनाने वाले हैं। 2 बार पीएससी कराने वाले हैं सारे युवा मित्रों के लिए। 12 मेडिकल कॉलेज, हर महीने 1 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। स्किल यूनिवर्सिटी, 12 नई यूनिवर्सिटियां हमारे राज्य में अपने द्वारा खोली जाएगी, जिनके भरोसे से युवाओं के लिए फिर नया प्रकार का काम मिलेगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक कर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इस निवेश संवाद में प्रदेश की औद्योगिक नीति, निवेश अवसरों और औद्योगिक अधोसंरचना की जानकारी दी जाएगी। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले यह संवाद निवेशकों से सीधा संपर्क बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे विकास के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत सरकार ने कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में अष्टलक्ष्मी में विकास को तेजी से बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2014 के 10,905 किलोमीटर से बढ़कर 16,200 किलोमीटर से अधिक हो गई है। मिजोरम, मणिपुर और मेघालय पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। क्षेत्र में हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 9 से बढ़कर 2026 में 17 हो गई है। अंतरदेशीय जल मार्गों और सागरमाला परियोजनाओं से व्यापार को नई गति मिली है। पीएम डिवाइन और पीएम गति शक्ति जैसी विशेष पहलों के जरिए बुनियादी ढांचे के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण सुनिश्चित किया गया है।
4: शिवपुरी से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रंजीत गुप्ता।
0: महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने आज भोपाल में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए शासन, प्रशासन और समाज को मिलकर प्रभावी और समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए 35,000 से अधिक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी तैनात किए गए हैं और बाल विवाह प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर लक्षित कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। कॉन्क्लेव में श्रेणी दो के शहरों के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, जल सुरक्षा, ग्रीन फाइनेंसिंग और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विचार विमर्श होगा। साथ ही सिंहल 2028 के लिए उज्जैन को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर विशेष मंथन किया जाएगा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में इंदिरा एकादशी के अवसर पर आज श्री खाटू श्याम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह मंगला आरती के बाद बाबा श्याम के दर्शन शुरू हुए और दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। इस अवसर पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया और उज्जैन से मंगवाए गए 51 किलोग्राम फूलों से दरबार सजाया गया। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु श्याम निशान लेकर पहुंचे और ढोल नगाड़ों तथा भक्ति गीतों के बीच बाबा के जयकारे लगाए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर समिति, पुलिस,

नगर सुरक्षा समिति और स्वयं सेवकों ने कतार बैरिकेटिंग और सुरक्षा की व्यवस्था संभाली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की गई। खंडवा में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किए गए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आज गुना में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ हुआ। श्योपुर जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा मेरा योगदान गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर ने नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में श्रीराम वाटिका के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा में 8 अक्टूबर को दिव्यांगजन रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण और उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुरैना में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर अभियान का शुभारंभ सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने किया। सीहोर जिले में आष्टा ब्लॉक के नगर परिषद कोठारी में सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:20 होने को हैं। आयुष श्रोता, हम अब सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रभु सिंह अनुज की आवाज़ में ये मल्हार।

0: मज़ा
1: बात ये है।
2: ये शर्माने की बात नहीं है, अगर आप आइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियों से परेशान हैं, तो मिलिए सर्व सुविधा संपन्न श्री सिद्धि विनायक अस्पताल में, जहां आपको मिलेगी सस्ती दरों पर ऑपरेशन की सुविधा जैसे लेजर और स्टेपलर।
1: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल, मेन तिली रोड, पंजाब नेशनल बैंक के सामने सागर।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम लोक रंग में, और आइए श्रोता हम अब सुनते हैं प्रेम नारायण पाठक की आवाज में ये लोकगीत।

0: प्रेम नारायण पाठक के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक रंग का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: किसान वाणी

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाए
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: राम राम स्वीकारें। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहन अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना की आप सभी जनन के का कैसे हाल चाल चल रहे हैं भैया। अब देखो ना, खरीफ की फसलों की कटाई और गहाई को काम जा टेम पे जोरों पे चल रहा है, वहीं रबी फसलों की बुआई को टेम भी मूड़ पे चलवा रहा है। उत्ते पे ही तीज त्योहार चले आ रहे हैं। ऐसे में हम सब किसान भाइयों को सबरे काम करने हैं, मनोध्यान जो रखने हैं कि खेती किसानी के कामों से अपनो ध्यान ने हटावे। और वो कहता ना कि खेती किसानी को काम अगर सही टाइम पे हो जाए, सही तरीका से हो जाए तो उससे अच्छो कछु नहीं है। तो कहवो हमारा जोई है कि सही टाइम पे फसलों की कटाई करें और जब बुआई को सही टाइम आ जाए तब बुआई करें। मनो उससे पहले अच्छे गुणवत्ता के बीज अपने क्षेत्र के लाने, जो अनुशंसित बीज हैं वे उनकी वैरायटी हैं लेके रख लेवे, खाद रख लेवे, अपनी बुआई के कृषि यंत्र जो हैं उनकी मरम्मत करके रखें, आयल वायल दे के रखें, जैसे कि जब बुआई को टाइम आए तो हमें देर ना हो, फटाफट बढ़िया अच्छे से काम हो जाए। कैसे भैया कहते ना कि भागम भाग के कामों में गड़बड़ी हो जाते है। भैया बात हम बुआई की कर रहे हैं,

0: तो हम आपको भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जे में किसानों के लाने उच्च गुणवत्ता के अच्छी उपज वाले संकर किस्म के बीज प्रदान करे जाते हैं और अच्छे बीजों के लाने किसानों को बढ़ावा दो जाते हैं। भैया वैसे भी कहते हैं ना कि जैसो बोगे वैसो काटोगे। जय मनसा से भारत सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल शुरू करी है जेखो राष्ट्रीय संकर बीज मिशन के नाम से जाना थे। भैया ई मिशन को उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले संकर यानी हाइब्रिड और उच्च उपज वाले मतलब अच्छी उपज वाले बीजों को उपलब्ध करावो सुनिश्चित करवो है। इनको उद्देश्य जो ही है कि उत्पादकता में वृद्धि होए मतलब फसलों से भरपूर उत्पादन प्राप्त होए, किसान आत्मनिर्भर बने स्वावलंबी बने और भरपूर वाकिलाने उत्पादन मिले। जा मिशन के द्वारा किसानों को प्रेरित करो जाते कि वे संकर किस्म के उच्च गुणवत्ता के अच्छे बीजों को लगाएं जैसे कि अच्छा उत्पादन उनके लाने मिल सके। भैया बात बीज की और बुआई की हो रही है, मध्य प्रदेश में अगर देखो जाए तो सबसे बड़ो रकबा रबी की फसलों में गेहूं को होते है और मध्य प्रदेश को गेहूं पूरी दुनिया में जानो जाते है। खास तौर पे सीहोर को गेहूं, रायसेन जिले को गेहूं और विदिशा को गेहूं और एक नहीं अनेक वेराइटियां हैं जिनका आप लगा के भरपूर लाभ ले सकत हो, भरपूर उत्पादन ले सकत हो। भैया बात निकली है तो हम आपके लाने आज एक बढ़िया बातचीत सुनवा रहे हैं गेहूं की उन्नत प्रजातियां, बता रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र देवास। इनसे बातकाव करो है पूनम सरावगी ने और जा बातचीत को सुन के आप जान पे हो कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी नई प्रजातियां हैं गेहूं की जिन्हें लगाई जा सकत हैं और जिन्हें लगा के हम लाभ कमा सकत हैं। अर्धसिंचित, पूर्ण सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में कौन कौन सी प्रजातियां आप लगा सकत हो, लाभ कमा सकत हो। तो भैया पहले जब बातचीत सुनाते हैं फिर आगे की बात करें।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: गेहूं की उन्नत किस्में कौन सी होती हैं जो हमारे किसान भाई इस रबी के मौसम में बो सकते हैं?
2: हमारे मध्य प्रदेश में रबी मौसम में सबसे अधिक क्षेत्र में गेहूं लगाया जाता है। चूंकि इस वर्ष कई क्षेत्रों में काफी कम बारिश हुई है तो हमें जो किसान भाई गेहूं की बोनी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उचित किस्मों का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है। गेहूं के अंदर कम पानी की किस्में अलग रहती है और जो सिंचित किस्में हैं अलग रहती हैं, तो इसलिए आप अपनी पानी की आवश्यकता के हिसाब से जितना किसान भाइयों के पास पानी उपलब्ध है उसके हिसाब से किस्मों का चुनाव करेंगे तभी गेहूं में अच्छा उत्पादन लेना ले पाएंगे। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कम पानी की किस्में हैं उनमें कुछ किस्में अमर, अमरता, हर्षिता के नाम से आया करती थी, चूँकि ये किस्में कुछ पुरानी हो गई हैं। अभी इन दिनों एक इंदौर सेंटर के द्वारा नई किस्म विकसित की गई है HI 1605 जिसको पूसा उजाला के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत अच्छी किस्म है और ये तीन पानी में पककर तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा DBW 110 और ड्यूरम वीट के अंदर HI 8737 ये भी किस्में हैं जो कम पानी में पककर तैयार हो जाती हैं। इसी तरह किसान भाइयों अगर आपके पास पर्याप्त पानी है, आपके पास चार पानी तक आप दे सकते हैं, तो उसके अंदर भी चपाती बने बनाने वाली अलग किस्में हैं और साथ ही जो ड्यूरम वीट है जिससे दलिया, बाफला, दाल बाटी बाटी बनती है वो किस्में अलग हैं। तो हम सबसे पहले जो चपाती बनाने वाली किस्में हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे क्षेत्र में HI 1544 जो कि पूर्णा के नाम से जानी जाती है काफ़ी प्रचलित किस्म है और काफ़ी बड़े एरिया में बोई जाती है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अनुसंधान कर ऐसी किस्में तैयार की हैं जिन्हें हम लोग बायोफोर्टिफाइड वैरायटी कहते हैं। ये जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हैं इनके अंदर आयरन, जिंक और प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो अगर हम चपाती बनाने वाली बायोफोर्टिफाइड वैरायटियों की बात करें तो इनमें HI 1634, HI 1636, HI 1650 ये काफ़ी अच्छी किस्में हैं और बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हैं। तो अगर हम इन तरह की किस्मों का प्रयोग में लाएंगे तो हमें अच्छा उत्पादन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में जहाँ कुपोषण की समस्या है तो ये एक जो बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में तो उस समस्या का समाधान भी होगा। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि जो हमारी नई बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं चपाती बनाने वाले ग्रुप में जैसे कि HI 1634 है, 1636 है, 1650 है, इन किस्मों का प्रयोग करें ताकि हमें आयरन, जिंक और प्रोटीन की भी पूर्ति हो पाए। इसके अलावा भी GW 513, GW 322 ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। इसी तरह अगर हम कठिया गेहूं की बात

0: करें तो कठिया गेहूं के अंदर HI 87-13, 87-37 जिसको पूसा अनमोल के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ 87-59 जो कि पूसा तेजस के नाम से जानते हैं, ये भी किस्में हैं। और जिसमें जो 87-59 है काफ़ी प्रचलित किस्म में है और अपने मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े क्षेत्र में बोई जाती हैं। कई सालों से ये देखा गया है कि गेहूं के अंदर भी कुछ तरह की बीमारियां आने लगी हैं, स्मट की बीमारी, ब्लाइट की बीमारी। तो अभी हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, इसने बॉम्बे जो बार्क इंस्टीट्यूट के नाम से है उनके सहयोग से एक नई किस्म 2024 में विकसित की गई है जिसको हम लोग TRVW 155 के नाम से जानते हैं। ये चपाती बनाने वाले ग्रुप में आती है और चार पानी में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उत्पादन देने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। औसत उत्पादन लगभग 60 क्विंटल प्रति हेक्टर इन किस्मों से मिल जाता है।
1: हम सिंचित क्षेत्र की और असिंचित क्षेत्र की किस्मों की बात करते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहें?
0: हाँ, जैसा अभी मैंने बताया कि अगर आप अर्धसिंचित या कम पानी की किस्मों का लेना चाह रहे हैं तो इसमें एक जो नई किस्म है पूसा उजाला HI 1605 काफ़ी अच्छी किस्म है, इसको आप ले सकते हैं। और अगर कठिया गेहूं के अंदर आपको कम पानी की गेहूं चाहिए, किस्म चाहिए, तो जो HI 8737 है, पूसा अनमोल के नाम से जानते हैं, या DBW 110 है, ये किस्में काफ़ी उपयुक्त हैं।
1: कुछ ऐसी किस्मों के भी नाम आप बताइए जो हमें शीघ्र अतिशीघ्र उपज दे सके।
0: जनरली जो कम पानी की किस्में रहती हैं ये जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं, जिसके अंदर हर्षिता है, HI 1605 है, चूँकि ये कम पानी में पककर तैयार होती हैं तो इनकी जो पकने की अवधि भी है दूसरी सिंचित किस्मों की तुलना में जल्दी रहती है, तो ये 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती
1: है। कुछ ऐसी किस्में भी सर आप बता सकते हैं जिनमें कीट व्याधि कम होती है?
0: हाँ, गेहूं में जनरली कीट की समस्या तो काफ़ी कम रहती है अगर हम बोनी सही तरीके से करते हैं, समय पर बोनी करते हैं, कीट की समस्या नहीं आती। परंतु कुछ क्षेत्रों में कुछ बीमारियाँ आने लगी हैं, तो जैसा अभी मैंने बताया कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय, इन्होंने बॉम्बे एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बार्क के नाम से एक संस्थान है, उनके सहयोग से एक नई किस्म तैयार की है TRVW 155। ये काफ़ी रोग प्रतिरोधक किस्म है और इसका उत्पादन भी कम काफ़ी अच्छा है, तो इस किस्म को हम ले सकते हैं जिसके अंदर काफ़ी मतलब कीट व्याधियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। साथ ही किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जो गेहूँ की बोनी है उसके लिए अनुशंसित बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, परंतु अधिकांश क्षेत्रों में देखा गया है कि किसान काफ़ी ज़्यादा बीज दर का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमें एक तो अधिक बीज का नुकसान होता ही है, साथ ही साथ कम टीलर निकलते हैं और पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। कई जगह देखा गया है कि किसान भाई एक हेक्टेयर में 150 किलो से लेकर 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर का प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ सभी किसान भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि अगर आप उचित बीज दर मतलब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर बीज लेंगे काम में तो गेहूं में अच्छे टीलर निकलेंगे, अच्छा उत्पादन होगा और जो पौधे के कल्ले हैं वो भी काफी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद किसान
2: भैया। अब अपन जब बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर महेंद्र सिंह से करी है थी पूनम सरावगी ने। गेहूं की उन्नत प्रजातियों की अगर बात करी जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में जैसो जैसो क्षेत्र बदलत जाते हैं, जैसी जैसी जलवायु बदलत जाते हैं, जैसी जैसी मट्टी बदलत जाते हैं, वैसे वैसे क्षेत्र के हिसाब से गेहूं की किस्में जो है वे बनाई गई है। हमारे जहाँ देश की खासियत है कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे मट्टी बदल जाते है, पानी बदल जाते है और वहाँ की संस्कृति भी बदल जाते है। ऐसी स्थिति है बुंदेलखंड की भी। बुंदेलखंड में अगर हम देखें तो बुंदेलखंड की सीमा भैया इतनी बड़ी है कि एकों कवियों ने बुंदेलखंड की सीमा को जब बांधो है तो उनने कही है कि भैंस बंधी है ओरछा पड़ा होशंगाबाद, लग भैया है कालपी चपिया रेवा पार। इतनी बड़ी सीमा जब बुंदेलखंड की है और जब बुंदेलखंड में भी भांत भांत की फसलें बोई जाते हैं, भांत भांत को जहां पे वातावरण है, इतिहास है, जहां को जब बुंदेलखंड की महिमा का कहिए भैया, जब बुंदेलखंड की महिमा अगर हम गाएं और सुनाएं तो एक गीत हमें याद आते बुंदेलखंड महिमा, और जहा गाई है डॉक्टर अरविंद सोनी ने। सुनते हैं और हम भी गौरवान्वित होते हैं अपनी बुंदेलखंड की महिमा सुन के।

भैया बुंदेलखंड महिमा अब अपन ने सुनी गाई है थी डॉक्टर अरविंद सोनी ने। खेती किसानी की बात हम कर रहे हैं। खेती किसानी के कामों में समझ बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा पैसा भी बचत है, टाइम भी बचत है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जहां बीमारे करे हैं कि हमारे किसान भैया खेतों में कीटनाशकों को छिड़काव करते हैं, नाना प्रकार के खतरनाक कीटनाशक अब खेतों में डाले जा रहे हैं और बेर बेर उनका जय कही जाते हैं कि ऐसे कीटनाशकों को परित्याग करें, उनको ना डालें। एक ही जगह आप जैविक कीटनाशक आ गए हैं उनको उपयोग करें। मानो फिर भी कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण करने के लाने अगर आप ऐसी दवाइयों को उपयोग कर रहे हैं तो उनमें कछु सावधानी रखना जरूरी है। कैसे के कहते ना कि भैया जरा सी चूक बड़ी दुर्घटना कर सकते हैं। और हम ऐसे में आपके लाने एक जा लघु वार्ता सुनवा रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार नेमा बता रहे हैं कि

0: कीटनाशकों को छिड़काव करते टाइम हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना जरूरी है और हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना जरूरी है।
1: किसान भाइयों नमस्कार, हम आपको कुछ जरूरी सूचनाएं आज दे रहे हैं। हमारे किसान भाई रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनसे कभी कभी नुकसान भी होता देखा गया है। तो इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि आ जो अक्षर है इसका बड़ा महत्व है। आ मतलब सबसे पहले असावधानी। अगर छिड़काव करते समय या भुड़काव करते समय हम असावधानी से काम करते हैं तो हमें या हमारी फसलों को नुकसान हो सकता है। दूसरा है अनावश्यक मात्रा। यदि हमारे किसान भाई कम या ज़्यादा जो अनुशंसित मात्रा दी गई है उससे कम या ज़्यादा हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं तो वो भी हानिकारक है। अविवेकपूर्ण, तीसरा जो बिंदु है ये अविवेकपूर्ण, मतलब ये है कि बिना सोचे समझे मात्र कीड़े मकोड़े देख के ही हमने उपयोग करना चाहा कीटनाशक का, तो उससे भी जितना फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और नुकसान हो सकता है। असंगतता, इसमें भी देखिए आ शब्द आया है, असंगतता मतलब ये कभी कभी हमारे किसान भाई डीलर के कहने पे या अपने मन से दो या दो से अधिक जो इंसेक्टिसाइड हैं कीटनाशक हैं वो मिला देते हैं या किसी दूसरे केमिकल के साथ मिला देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी इससे नुकसान हो सकता है। अनुशंसित, जितनी मात्रा जिस फसल के लिए जब बताई गई है और जितना पानी बताया गया है उतने ही पानी में घोल बनाकर अनुशंसित मात्रा का ही हमारे किसान भाई उपयोग करें, तभी उनको सही परिणाम मिल सकते हैं। अधुनातन, अधुनातन का मतलब ये है कि रिसेंट, मतलब जो नए नए कीटनाशक निकलते हैं, नए नए रसायन निकलते हैं, उनका उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए और उसकी मात्रा का भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। अलक्षित मतलब ये कि जिस कीड़े के प्रति जिस इंसेक्टिसाइड का या कीटनाशक का प्रयोग करना बताया गया है, अनुशंसित किया गया है, तो हमारे किसान भाइयों को उसी का उपयोग करना है, उसी कीड़े के विरुद्ध में उपयोग करना है। अन्य जो जीव होते हैं या दूसरे खेत में भी जा सकते हैं तो इसका हमारे किसान भाई जरूर ध्यान रखें। अविलंब, कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसान भाई चूक जाते हैं, जब कीड़ा आता है कीड़े का आक्रमण होता है तो चूक जाते हैं, तो कीड़ा जैसे ही आप देखते हैं और यदि आप देखते हैं कि ये ज़्यादा मात्रा में आ गया है तो हमें अविलंब जो है अपना निर्णय लेना चाहिए और उसी के हिसाब से किसी कीटनाशी का भुरकाव या छिड़काव करना चाहिए। अर्ध ज्ञान मतलब ये कि किसी भी रसायन के बारे में पूरा ज्ञान आप ले लीजिए, जो ऑफिसर रहते हैं जो वैज्ञानिक रहते हैं उनकी सलाह जरूर ले लीजिए या कहीं आपके पास में साहित्य उपलब्ध है तो उससे पूरा ज्ञान उसके बारे में पूरी जानकारी उसकी पढ़ लीजिए, उसके बाद ही हमें किसी रासायनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और अनजाना मतलब ये कभी कभी क्या होता है कि हमारे डीलर जो है ज़बरदस्ती आपको कोई भी दवाई पकड़ा देते हैं जिसका आपने कभी नाम ही नहीं सुना था, तो ऐसे अनजान केमिकल से अनजान रसायन से हमारे किसान भाइयों को संभल कर रहना चाहिए, बहुत सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है बजाय फायदे के। हमारे किसान भाई आजकल जैविक या प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और चूहों के लिए मात्र अभी तक हमारे किसान भाई जिंक फास्फाइड वगैरह उपयोग करते हैं। मेरा कहना ये है कि चूहों का जैविक या प्राकृतिक नियंत्रण की तरफ भी ध्यान रखें। बेसरम या धतूरे के पत्तों में कटे दाने ज्वार मक्का या किसी दूसरे अनाज के मिला के और उसको उबाल कर और इनको बिलों के आसपास डाल दें तो ये ज़्यादा उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कीटनाशकों के छिड़

0: करने एक बड़ी अच्छी पहल है। जाको मुख्य काम है किसानों को FPO FPC बनावे में मदद करबो, किसानों को सामूहिक रूप से उत्पाद भंडारण और विपणन से जोड़बो, कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत और बाजार तक पहुंचावे में इनका मदद करबो। आगामी कार्यक्रमों में आपके लाने FPO कैसे बनाएं, FPO के का काम होते हैं, इनकी जानकारी भी हम आपको लेके आए हैं। और मनो अब चल बे की बिरिया हो रही है, चलत चलत आज की कृषि सलाह हम आपको बता देवे। और भैया चलत चलत हम आपको बताएं कि अक्टूबर के महीना में जो मुख्य कृषि कार्य हैं उन पर हमें ध्यान देने हैं, जैसे खेत की अच्छी जुताई करके खरपतवार और पिछले फसल अवशेषों को प्रबंधन करें, मिट्टी की जांच के आधार पर खाद एवं उर्वरक की मात्रा तय करें, गेहूं चना मसूर मटर सरसों आदि की प्रमाणित बीज की व्यवस्था करके रखें, गेहूं की बुआई की बात करें तो बुआई को सही टाइम अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से मानो जाते हैं, अच्छी गुणवत्ता एवं प्रमाणित बीज को उपयोग करें और बीजोपचार बुआई के टाइम पे जरूर करने हैं। चना और मसूर की भी बात कर लें, अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से चना और मसूर की बुआई की तैयारी शुरू कर दे, खेत में पर्याप्त नमी होबे पे ही बुआई करें। बीज उपचार से जड़ एवं बीज जनित रोगों से बचाव में आपके लाने मदद मिलेगी, तो बीज उपचार जरूर करें। सरसों की बुआई करे वाले किसान भैया ध्यान रखें, अक्टूबर में सरसों की बुआई को सही टाइम शुरू हो जाते हैं, खेत में जल निकास की व्यवस्था करके रखें, प्रमाणित और अनुशंसित किस्म के बीजों को उपयोग करें। हाँ, सोयाबीन की फसल खेत में खड़ी है, जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह पक चुकी है वे फसल की कटाई करें और सही तरीके से कटाई करें, मड़ाई करके सुरक्षितों को भंडारित करके रखें, सोयाबीन को भंडारण दानों को अच्छी तरह सुखावे के बाद ही करें। सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन की अगर बात करी जाए तो रबी की फसल में पहली सिंचाई और आगे की सिंचाई मिट्टी की नमी और फसल की अवस्था को देख के करबो चाहिए, शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दो चाहिए। तो भैया जेतु थी आज की कृषि सलाह, और अब आज के जो मंडी के भाव है वे हम आपको बता दे। इंदौर कृषि उपज मंडी में जो अनाजों के भाव चल रहे हैं, सोयाबीन 4000 रुपया न्यूनतम, अधिकतम 5925 रुपया प्रति क्विंटल। इंदौर मंडी में गेहूं को न्यूनतम भाव 2541 रुपया, अधिकतम 3070 रुपया प्रति क्विंटल है। कल इंदौर मंडी में तुअर यानी अरहर को न्यूनतम भाव 7905 रुपया तो अधिकतम 8250 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज भाव। चना न्यूनतम 4300 रुपया, अधिकतम 7095 रुपया प्रति क्विंटल। मसूर को न्यूनतम भाव 4950 रुपया, अधिकतम भी जोई थो। मक्का को न्यूनतम भाव 1600 रुपया, अधिकतम भाव भी जोई थो। मूंग को न्यूनतम भाव तो 6405 रुपया, अधिकतम भाव 6570 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन को न्यूनतम भाव 4000 रुपया रहो, अधिकतम भाव बिको 5700 रुपया प्रति क्विंटल। जे कछु भाव थे मंडी में रहे अनाजों के, और आगामी दिनों में सोयाबीन के भाव में भी बढ़ोतरी होबे की संभावना बताई जा रही है, साथ ही चना के भाव में भी बढ़ोतरी होबे को अनुमान दर्ज करो जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि जैसे जैसे मंडियों में आवक बढ़ रही है भाव में उतार चढ़ाव भी देखने वे को मिल है गो। तो आप जा कार्यक्रम से जुड़े रहो, कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लाने अनाजों के भाव की जानकारी तो देते ही है, संगे संगे समसामयिक कृषि जानकारी और विशेषज्ञों से विभिन्न विषयों पे खेती किसानी आधारित बातचीत भी हम आपको सुनवाते हैं। तो अब आज के जा कार्यक्रम में बस इतोई, अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना को दियो आज्ञा स्वीकार करो, दो ही हाथ जोड़े की राम राम जय सिया राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान
1: वाणी। ये था कार्यक्रम किसान वाणी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में फिल्म लव स्टोरी का ये नगमा। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

और रिवनन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे लव स्टोरी फिल्म का ये नगमा। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं जावेद अली और साथियों की आवाज़ों में फिल्म तुम मिले का ये गीत।

तुम मिले फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे जावेद अली और साथियों की आवाज़ों में। और आइए श्रोताओं अब सुनते हैं प्रीतम के संगीत निर्देशन में संजय मासूम का लिखा ये गीत। फिल्म का नाम है जन्नत 2। आवाज़ है राहत फतेह अली खां की।

जन्नत टू फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे राहत फ़तेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में। और आयु श्रोताओं, चलते चलते हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ये गीत शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का।

शिल्पा और अरिजीत के गाए फिल्म लाल सिंह चड्ढा के इस नगमे के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आयु श्रोताओं, अब समय हुआ है कार्यक्रम संगीत सरिता का। तो संगीत सरिता के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं आबिदा परवीन की आवाज़ में हज़रत ज़हीन शाह ताज का ये कलाम।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: इस अंतराल के बाद आई श्रोता अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में वी विजय की ये रचना। संगीत से सजाया है नीलू निरंजना ने।
2: सर्वर से निकलेंगे और सर्वर तक ही पहुंचेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे वी विजय की ये रचना। इसे हमने मारिया एल्बम से लिया था। और रही श्रोता, हम सुनते हैं उमर मलिक की आवाज़ में यूसुफ सलीम और उमर मलिक का ये कलाम। धुन बनाई है डॉक्टर जे एस ने।

और आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं धूम तारा एल्बम का ये गीत सुचित्रा की आवाज में। शब्द रचना है अरुण राज की और संगीत से सजाया है रहमान राजन ने।

0: सुचित्रा और साथियों के गाए फिल्म, माफ कीजिएगा, एल्बम धूम तारा के इस गीत के साथ ही संगीत सरिता
1: संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
2: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए, वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने, तो गुजरात

0: मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
3: यूपीआई अब सिर्फ भारत

0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में UPI आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
1: जब से UPI मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और उसमें UPI से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ।
0: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में UPI का योगदान लगभग 49% है। आज UPI केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
3: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
2: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले टी

0: टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं सन्यासी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। शब्द रचना है विश्वेश्वर शर्मा की और संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और उनके परिवार के सभी लोग। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, शिवा, शिवांशु, प्रेम नारायण और उनके परिवार के सभी लोग। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका, वाणी थांदी और उनके परिवार के सभी लोग। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और उनके परिवार के सभी लोग। जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से इसी गीत की फरमाइश हम लिख भेजी है शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल और उनके परिवार के लोग। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इसी गीत को सुनना चाहते हैं विनोद, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नहटा, दीक्षा, कुश मूड़त और उनके सभी मित्रगण। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

सन्यासी फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। शब्द रचना थी विश्वेश्वर शर्मा की और संगीत शंकर जयकिशन का। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म आप आए बाहर आई का ये नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा और उनके परिवार के सभी लोग, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या और उनके परिवार के सभी लोग इसी गीत को सुनना चाहते हैं। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश राज वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं डबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर और उनके परिवार के सभी लोग, जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शिव गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता, लिपि गोप, दीपाली गोप और उनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म आप आए बाहर आई का ये नगमा। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: का पार्ट

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मन चाहे गीत में, और आई श्रोताओं आप सुनते हैं फिल्म फकीरा का ये नगमा महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक और उनके परिवार के सभी लोग, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम वर्मा और ज्योति शिवांश वर्मा। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और उनके परिवार के सभी लोग। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद और उनके परिवार के सभी लोग। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर, जस्सी, सीता और गीता।

इस गीत को सुनना चाहते हैं चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र रौनक सेन और उनके परिवार के सभी लोग। तेलंगाना निजामाबाद से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शेख अल्लाह बख्श ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। तो आई सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

0: फकीरा फिल्म के इस गीत के बाद आइए श्रोताओं आप सुनते हैं आरजू फिल्म का ये नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण और उनके परिवार के सभी लोग। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराज से इसी गीत की फरमाइश हम लिख भेजी है गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर और उनके परिवार के सभी लोग। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से इसी गीत की फरमाइश हम लिख भेजी है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।
1: के साथ इस मीटिंग की दरखास्त की गई थी और

मोहम्मद रफ़ी के गाय फिल्म आरजू के इस नगमे के साथ ही मनचाहे गीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: करो। बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहाँ दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि मुंबई के सिडनम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई।
1: क्या बदतमीजी है?
2: सुनो भाइयों, सुनो, ये होली को बदतमीजी कह रही है।
3: तो भी हमें क्या करना चाहिए?
2: जो पंचों की राय,
3: तुमने लड़की को देखा?
2: देखा,
3: लड़की पसंद है।
0: हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।
4: दुश्मन

उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके फिल्मी सफर में कई ऐसे पड़ाव भी आए जो किसी रियलिटी शो की कथानक वाली बात को साबित करते हैं, यानी कथानक की भांति ही लगते थे। सुनील दत्त साहब ने अपनी फिल्म मन का मीत में पहली बार विनोद खन्ना को मौका दिया और बना दिया फिल्म के नायक सोम दत्त के खिलाफ खलनायक। इस फिल्म की नायिका थी लीना चंदावरकर।

0: शर्माना। खलनायकी से शुरू हुआ विनोद खन्ना का फिल्मी सफर मील का पत्थर साबित हुआ। मीरा, इम्तिहान, इनकार और लेकिन जैसी भावना प्रधान फिल्में हों या फिर कच्चे धागे, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हेरा फेरी, डाकू और जवान या फिर आखिरी डाकू और मेरा गांव मेरा देश जैसी हिंसा प्रधान फिल्मों में भी वे खूब जमे और जमकर खूब चले।
1: हाथ आई हुई ऐसी अनमोल दौलत को छोड़ दो। जब्बर सिंह इतना पागल नहीं है। तू जिस जमाने की बात कर रहा है उसे तो चंबल की गहराइयों में डूबे हुए भी जमाना हो गया है।

अभिनेता विनोद खन्ना के करियर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर चुनौती को, हर चैलेंज को स्वीकार किया और निभाया, और बाद में अपने करियर को गंभीर भूमिकाओं के जरिए एक नया मोड़ भी दिया।

फिल्मकार और गीतकार गुलजार ने 1971 में फिल्म मेरे अपने में बतौर नायक के रूप में विनोद खन्ना को चुना, जो उस फिल्म में समकालीन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते नजर आए।

यहां से शुरू हुआ विनोद खन्ना के संजीदा अभिनय का सिलसिला, जो रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता रहा और चलता रहा। फिर आई गुलजार की मीरा और इम्तिहान।

इम्तिहान के इम्तिहान को पास किया और अपने करियर की दूसरी यात्रा में विनोद खन्ना को हासिल हुई लता मंगेशकर की फिल्म लेकिन, जिसमें गुलजार ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण और हटकर भूमिका प्रदान की थी। संजीदगी भरे अभिनय का कमाल देखिए कि बिंदास दिखाई देने वाले विनोद खन्ना को फिल्म चांदनी में यह भी पुकारना पड़ा।

0: विनोद खन्ना के रौबदार अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों।
1: यहाँ एंथनी कौन है?
2: एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है साहब। वो बाजू के मामले में होगा, तुम इधर ठहरो, अपन अभी देख के आएंगे।
1: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है।
2: ऐसा क्या?
3: जरूर देखाएंगे साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लकी मैन।
1: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था, तुम्हारा नाम भी तो एंथनी है ना?
2: हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंजाल्वेस भी लगेला है, एंथनी गोंजाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ।
0: माना माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

0: वक्त की हेरा फेरी है।
1: और यह है फिल्म खून पसीना।
0: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
1: अमर अकबर एंथनी।

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई। मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और राज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन, जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र।

चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का, और ये खुशनुमा दौर था 1999 में विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने एक्टर विनोद खन्ना पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं बस वही एक चेहरा नजर आता है। इंसान के तमाम चेहरों में बस वही एक पहचाना सा चेहरा चारों ओर दिखाई देता है। जी चाहता है बस उसी का दामन थाम जिंदगी की राहों पर चलते रहें और जिंदगी का ये सफर कभी खत्म न हो।

किसे पता था जुड़ेंगे दो दिलों के तार, किसे पता था दिल समंदर बन जाएगा, किसे पता था कि मिलेगा कोई साझीदार और बांट लेगा सारे गम और खुशियां। नर्मो नाजुक रेशमी अल्फाज से जमाने की तलखी सोख लेगा। कहाँ पता था आंखों की नमी पर मुस्कानों के मोती सजा देगा। कहाँ पता था वो खुशियों के चांद को जिंदगी में धर देगा। नहीं पता था दो दिलों का, दो मौसम का, दो शहरों का चांद एक ही होगा।

कभी कभी मोहब्बत का जादू इतना हसीन होता है कि जिस मोड़ पर हम कदम रखें वहां कोई अपने आप मौजूद मिलता है। रिश्तों की वही मिठास, वही चुपचाप साथ चलने का हम चले तो साया भी कदमों के साथ था। राहें अजनबी थी मगर वो पास था। प्यार जब सच्चा हो तो जुदाई का फासला भी मिट जाता है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झड़ जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई पुकार।

जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं, कोई अपना हमें छोड़कर जाने ही नहीं देता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका साथ हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है। हम कई बार उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ छोड़ पाते हैं, बस ये गीत गुनगुना कर रह जाते हैं।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: ใจรัก
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
2: मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
3: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम

0: क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि यह अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड, एन इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी एंड प्लान ऑल दीज एस्पेक्ट्स।
2: एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises. Prime Minister Narendra Modi in a social media post said this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the Cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem. Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi stated this while interacting with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Seva Teerth today, ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from tomorrow till 10th of this month in New Delhi. Senior BJP leader and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has criticized Congress Party and leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, for repeatedly targeting Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to the media in New Delhi today, Mr. Rijiju said political parties should serve the people and accept the electoral mandate.
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं
5: एवरीडे द ड्रामा दैट राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी कीप क्रिएटिंग ओवर द इलेक्शन कमीशन एंड द रिपीटेड अटैक्स दे मेक ऑन द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू स्टॉप नाउ इन अ डेमोक्रेसी इफ यू सर्व द पीपल यू विल रिसीव द मैंडेट इफ यू फेल टू गेट द पीपल्स मैंडेट एंड देन अब्यूज द इलेक्शन कमीशन दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड
4: और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे।
1: Earlier in the day, opposition parties held a protest march from Parliament House to the headquarters of the Election Commission of India in the national capital over alleged irregularities in the special intensive revision process and demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Later, leader of opposition in the Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi, along with party leader Priyanka Gandhi Vadra and other supporters, entered Akashwani Bhavan and staged a protest on the premises. With regard to today's opposition protest, the Election Commission has clarified that no political party had sought an appointment till 4 p.m. to meet the Commission through its representatives. In a press statement, the Commission said that, however, at around 4 p.m., it received information from Delhi Police that a delegation of members of Parliament led by the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, wants to meet the Commission and submit a memorandum. The Election Commission considered this request unusual, which could not be accepted. Voting concluded peacefully for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with a Lok Sabha seat in Assam. Polling took place for Madurandagam and Dharmapuram seats in Tamil Nadu, Tattanjavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. Voting was also held for Nagaon Lok Sabha seat in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. Shreyas Iyer's unbeaten 102 and debutant Naman Dheer's 3-wicket haul powered India to an 8-wicket win over the West Indies in the opening T20 in Lucknow tonight. And that is the end of this news bulletin.
6: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।